0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: झटके जुल्फ से

RM2. Radio Musty. Feels a Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सोमवार 11 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: कितनी प्यारी बात होती है ना कि अगर आप खत लिखते हो तो बस दिल का हाल जो है आप बयां कर पाते हो. आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई. व्हाट्सएप बस एक मैसेज हो गया, आपका मैसेज पहुंच भी गया. लेकिन हाँ, अगर आप अपनों तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी भी आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए उन सैकत नव नव दूज नवकात. उससे पहले लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 5:05 हो रहे हैं. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग. और मंडे मॉर्निंग में आपका साथ देने के लिए एकदम तैयार. सो व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे ट्यून्ड 7 बजे तक नीतू आपके साथ.

0: प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, बस अपने प्यार को आप अपने पास रखना चाहते हैं, समेट कर संजो कर, नहीं तो आपके साथ इन गानों के जरिए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: It's a very good morning, pranam sabhi ko, aur yahan par hai har har Mahadev aapko bhi, bhai Suraj Sharma Sajada and family triole se. सुप्रभात नीतू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपके नाम अंजनी, आपके पूरे परिवार के लिए। एंड शमी कपूर वाला गाना आपने सुन लिया, तो यहाँ पर शीला जी है लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से, उनका मूड भी एकदम गुड गुड बन गया है। थैंक यू। कैसे हैं प्यारी सी ज्योति फ्रॉम शातो बिनागस, सुजलाशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार के नाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी मौदालबिया के हरक परिवार, खास तौर से धीरज, आयुष, विधिशा, अश्विन एंड ज्योति। गुड मॉर्निंग जी, आप है श्रिया फ्रॉम नोथ्रदाम, एंड आज आपकी बड़ी दीदी काजल और जीजू नीतीश, मिस्टर एंड मिसेस होराधन, उनकी शादी की सालगिरह है। सो सभी दर्शन, सोहराय, सिबालक, सुनक सिंह, उदब, होराधन, गुर्जा परिवार एंड ऑफकोर्स रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमस्कार जी, आप हैं मिस्टर चोनियाज विजुअल फ्रॉम गोशबुआ गोशबुआ, और आप कहते हैं आज कि नथिंग एग्जिस्ट एंटायरली अलोन, एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू एवरीथिंग एल्स। अगर ये छोटी छोटी बातें हर कोई समझ जाए ना, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। प्रणाम आपको। जॉगिंग करते हुए कल्याणी फ्रॉम कौतुगल, हर हर महादेव आपके नाम, पूरे परिवार के लिए।

जो कर खुद दुखी रहता है लेकिन सबको हंसाता रहता है, वैसे ही लोगों तो उनका क्या कहना है, वो तो बातें करते रहते हैं। बस आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते चले। मंडे मॉर्निंग है, बस ये दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू मिस्टर टोनी, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपको कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, वीकेंड अच्छा रहा एंड आपके लिए भी ऐसा ही हो, यही हम कामना करते हैं। राजन, मोनिका, पूनम, श्रिया, उमेश, अर्षी एंड डियर वांस, नमस्ते जी। प्लीज मेरा नाम भी जोड़ दीजिए, व्हाई नॉट। बदवक विदेशी, तयाग से और एनी रोमांटिक गाना, अनुषा, खेदा परिवार, मोताबा से एंड आपके लिए भी ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आप आर यू फैमिली, आप हो कहाँ से? ऑफकोर्स फ्रॉम ओशनवा।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 35 मिनट पल दो पल का साथ है नीतू के संग ऑन रेडियो मस्ती टिल 7. गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको और मिस्टर गुलाब जगा सिंह आत्मानंद, साथ में है माला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कागुलीन सिंह, पूरे परिवार के नाम शुभ दिन आप सभी को। बस

मैथ्स ट्रू कहते हैं कि प्यार के साथ तो जिंदगी भी कट जाती है, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल। प्यार के साथ साथ अपनों का भी साथ होना चाहिए। काम है तो जिंदगी है भाई, तभी तो पेट भरेंगे। थैंक यू सो मच।

0: हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मीला रामदिकल, मोता ब्लॉन्श से बेटे नितेश एंड आपके पूरे परिवार के नाम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.
0: 5:40 इस गीत के बाद आपका होरोस्कोप।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: बस आंखों आंखों में प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन आपका दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज,

0: मेष राशि। वल आज का आपके ऊपर से पुराने कर्ज का बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन बी वेरी केयरफुल। जो फिजूल खर्च है आपकी जेब ढीली भी कर सकती है। शेयर मार्केट से अचानक फायदा आपका दिन बना देगा। काम के सिलसिले में भागदौड़ ज्यादा रहेगी और फोकस थोड़ा दगमगा भी सकती है। बस किसी अजनबी की मीठी बातों में आने से बचे, आपकी मेहनत आखिरकार रंग जरूर लाएगी।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज जरूरी कामों पर पूरा ध्यान देना ही सफलता की चाबी होगा। घूमते फिरते कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे बहुत काम आएगी। वैसे अटका हुआ सरकारी काम पूरा होने के संकेत है। घर को सजाने संवारने का मन बनेगा। संतान की ओर से खुशखबरी दिल को सुकून देगी और आपकी नेतृत्व क्षमता भी निखर कर सामने आएगी।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज कुछ नया करने की ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर जोश भर देगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा, नहीं तो छोटी बात बड़ा विवाद बन भी सकती है। बड़ों के साथ किसी बिजनेस डील पर चर्चा हो सकती है। वैसे लाइफस्टाइल में सुधार आएगा और सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। वाजिबा।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज का दिन खास खुशखबरी लेकर आ सकता है। मन में टेंशन दूर होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि मस्ती के चक्कर में काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें। विरोधियों से सतर्क रहें और पारिवारिक बातें घर तक ही सीमित रखें।
1: लियो सिंह राशि।
0: वेल, आज आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। किसी दूर रह रहे रिश्तेदार से मिलने का प्लान बन सकता है। आपके फैसले सटीक रहेंगे जिससे काम आसान होगा। किसी सहयोगी का उनकी दिल की बात जो है आपको लग सकती है, लेकिन प्यार और सपोर्ट सहयोग की भावना आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगी।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज नई संपत्ति लेने के योग अब बन रहे हैं और कोई अटकी हुई बिजनेस डील फाइनल भी हो सकती है। भगवान यानी कि भक्ति में मन लगेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी भी शुरू हो सकती है। पुराना कर्ज चुकाने की दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज नई संपत्ति लेने के योग बन रहे हैं और कोई अटकी हुई बिजनेस डील फाइनल भी हो सकती है। भगवान की भक्ति में मन लगेगा। घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी शुरू हो सकती है। पुराना कर्ज चुकाने की दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे और बस मान सम्मान में वृद्धि भी होगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छे मौके सामने आएंगे। आपकी पहचान और संपर्क बढ़ेंगे। बॉस भी काफी काम आपके काम से खुश रहेंगे। स्वादिष्ट खाना का आनंद मिलेगा, लेकिन पेट का ध्यान रखना जरूरी है। नो जंक फूड्स। कोई जरूरी जानकारी किसी के यानी किसी से शेयर करने से पहले बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा और काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: वैसे आज का दिन मिला जुला रहेगा। माँ से पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत होगी और लाइफस्टाइल में सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला थोड़ी टेंशन दे सकता है। पुरानी दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन पुरानी बातें छोड़ने से आपको छेड़ने से बचने होंगे। बिजनेस में नई पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित भी हो सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज राजनीति से जुड़े लोगों के लिए खास अवसर है। किसी बड़े नेता से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ शॉपिंग का प्लान बनेगा, लेकिन खर्चा उस पर ध्यान रखें। उधार लेने लेकर वाहन चलाने से बचे। हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधी भी सक्रिय रहेंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: राइट, आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेश से अच्छा लाभ भी मिल सकता है। बिजनेस में नया बदलाव आपको आगे बढ़ाएंगे। लाइफ पार्टनर को प्रमोशन मिलने से आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। मेहनत का वैसे आपको भी पूरा फल मिलेगा। हाँ, घर में धार्मिक माहौल बनेगा। रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहेगा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज नया वाहन खरीदने का मन बन सकता है। काम में पूरी मेहनत दिखानी होगी, तब भी सफल

सहायता मिलेगी। पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो गुरुजनों की सलाह जरूर काम आएगी। संतान की संगति पर ध्यान देना जरूरी है। उधार लेने की योजना फिलहाल उसको आप पोस्टपोन टाल दीजिएगा। बड़ों के किसी बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है, लेकिन बड़े हैं आपके हित।

0: Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: खुशियों के पल आपके दामन में 5:56 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: 6 baje hain. Sundhya Sankshipt Samachar aapse Geeta. Namaskar aapko.
7: Namaskar Nitusha. Sabhi ko hamara namaskar. 2 साल बाद अब 30 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रसभा के स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में PAC के 5 सदस्य

0: सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। आने वाले 13 से 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये चौथा संस्करण विभिन्न देशों से आए शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्र करेगा। और विदेशी खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहेली इलाकों पर 28 से 30, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहेली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:29 पर और शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio.

आपका हर सपना सच हो जाए। 6:10 वेलकम बैक। एंड बस सुबह सुबह ये रोमांटिक गाने इस ठंडी ठंडी हवाओं में बहते हुए आपके दिल तक छू रही है। थैंक यू सो मच 5499-1294 पर हमारे हम सफ़र बनने के लिए थैंक यू। और अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको यहाँ पर बॉम्बू से है प्यारी पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा के लिए और आपके नाम भी धनेश्वर जी एंड द विदुस परिवार। लव यू नीतू, थैंक यू सो मच, लव यू टू। आप है कौन यहाँ पर रेखा प्यारी सी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई वाइफ काजल, हबी है सचिन विथ यू और आप रहते हैं पुतखुदो विलाज। सो व्हाटएवर यू माइट बी, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ। पॉइंट दिलास्को से रवेश का जन्मदिन है और बस पापा रवेन, मामा शिवरानी, रवेश, श्वेता, जीवन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, सोनम भोला। नाइस गाना आपके लिए, आपके मॉम, आपकी एंजल, अभिषा, अश्विनी, वंदना, प्रिया एंड सीमा के नाम। बदवक विदेशी, थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए।

0: 92.2
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: 6:19 हुए हैं, बस थोड़ी देर में 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। लेट मी विश हैप्पी 14th बर्थडे टू यू प्रिंसेस सांसविका नौसिया ऑफ पालमो इटली, विनेश निशा रविश प्रिशा लवशा डियर वंस की तरफ से बेस्ट विशेस। हाय नीतू, नेक्स्ट गाना प्लीज चला दीजिएगा, व्हाई नॉट, आपके लिए कविता। एंड यहाँ पर है गुड मॉर्निंग बेस्ट विशेस काजल नितेश, हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी चाचा सोहराय पामिसा दर्शन सुनक सिंह सिबाला खोराधन उदब फैमिली है स्टैंडिंग ओजिल से। एंड लगे हाथ, लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू टू डियर युवेश दीनदयाल, आपकी मॉम आरती, पापा साइलेश, भाई खिलेश, सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बर्थडे विशेष टू यू टू मौसी रीता फ्रॉम करिश्मा, सुनीता, अनिता, प्रेमिला, कृत, गासों एंड सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार।

ये गाना आपके नाम शालू समय आप अपनी दुकान में है शॉप में है एंड डिब्बों को आज टू यू साथ में है संजय शाली सौरभ एंड काली चगन परिवार स्माइल

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जितने भी गाने हैं सब आपके 624 once again मोकुराज चोदर्स रास्ते पर होंगे. Please drive carefully and मौसम कैसा है? By the way, it's raining, sunny. शायद धूप निकल गई होगी थोड़ी देर में. जो भी हो, आपकी ये जो मॉर्निंग है एकदम मस्त हो, मज़ेदार हो, यही कामना करते हैं. लक्ष्मण नायक को कालीचरण दीनदयाल परिवार, हैव अ गुड डे अहेड. And to you, to Sheetal and Naiko family as well. And happy birthday to Hesh Khedna, Vijay Goodlands. Wishes from Mama Jyoti, Papa hai Sanjeev, aapke bhai Sarvesh, Dadi, Nani, Dada, sab parivar ki taraf se shubhkamnaen. Nahi bhule aapko Dhotika, if you dekh rahe ho, se andura khujana family.

पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। 2 साल बाद अब 30 से अधिक अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में PAC के 5 सदस्यों ने

0: समिति के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। और हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब समाचार विस्तार से। ये एक ऐसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान की थी। दो साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ठोस प्रतिबद्धताएं की जाएंगी ताकि समानता पर आधारित एक नई फ्रांस अफ्रीका साझेदारी को मजबूत रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामागी कार्यवाहक का प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। प्रणव बिहारी अभी उदय ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं।
1: इस शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य बातों को हकीकत में बदलना है। साल 2024 में जब विलियम रूटो और इमैनुएल माक्रों ने इस आयोजन की घोषणा की थी, तब उन्होंने नवाचार यानी कि इनोवेशन और विकास के लिए एक साझेदारी का वादा किया था। उनका लक्ष्य ऐसे ठोस परिणाम लाना है जो आर्थिक रूप से सफल हो और जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। पहला दिन व्यापारिक जगत यानी कि शुरुआत बिजनेस वर्ल्ड से होगी। नैरोबी यूनिवर्सिटी में 1500 से अधिक लोगों को जुटाने की उम्मीद की जा रही है, जिनमें अफ्रीका और फ्रांस के बड़े नेता, निवेशक, छोटे व्यापारी यानी कि एसएमईस तथा युवा ठेकेदार शामिल होंगे। इनका उद्देश्य मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देने की नींव रखना है। दूसरा दिन यानी कि मंगलवार को केनियाटा कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्र अध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख कमान संभालेंगे। उनके साथ अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और बड़े वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी होंगे। भविष्य के लिए 7 अहम विषय चुने गए हैं, जिनमें ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन, वित्तीय सेवा, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। ये भी माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में मॉरिशस को बड़ा फायदा मिल सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब अफ्रीका पर टिकी हुई है। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अगले जुलाई में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी मॉरिशस करेगा।
0: प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक मंच है। जम्मू केन्याटा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉ. नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर शिरीन ओमिरोडिसिफ्रा को भेजे गए एक पत्र में पीएसी के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष एड्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनयिक उपयोग किया।

0: करना है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। अपनी ओर से अधयन जिवाल ने याद दिलाया कि रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई थी और उन्होंने कहा कि सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देना उनका कर्तव्य है। अंजलि फुलचंद, सिरतन अभ्युदय।
1: En tant que président du PAC, les mots de voix assure moi qui m'a une recommandation peut être appliquée.
2: पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष होने की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य बनता है ये सुनिश्चित करना कि किन किन सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी मॉरिशन इसी से संबंधित है। पूर्व में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट केवल दराजों में ही रही, इसीलिए इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सरकार को भी इस स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चुनावी अभियान के अंतर्गत सरकार ने खुद स्टैंडिंग ऑर्डर्स में बदलाव लाने का वादा किया था, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुड़ी सिफारिशें आम जनता तक पहुँच सके और इसे पढ़कर मॉरिशनों को पता चलेगा कि इसमें आखिरकार है क्या। अब जहां तक दवाइयों के भंडारण की कार्रवाई की बात है, तो अब तक कोई बदलाव नहीं लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा।
0: क्या मॉरिशस में आखिरकार एक मीडिया एम्बिज ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए? ये सवाल इस सप्ताह फिर से उठाया गया जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत बुलेल ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सप्ताह के तहत मीडिया ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा की। वकील बुलेल ने 2013 में विधि विशेषज्ञ जोफ्रे रॉबर्टसन की प्रारंभिक रिपोर्ट मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस में की गई एक सिफारिश का उल्लेख किया। इस रिपोर्ट में एक स्वतंत्र मीडिया ओम्बिड्स पर्सन नियुक्त करने की वकालत की गई थी, जिसका कार्य जनता की शिकायतें प्राप्त करना, सुधार को प्रोत्साहित करना और पत्रकारिता में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना होगा। इस संस्था की कल्पना मीडिया पर नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता को मजबूत करने और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 साल बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत निवारण व्यवस्था, इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया भविष्य पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन आखिर ये रॉबर्टसन रिपोर्ट क्या है और आज भी इसका इतना महत्व क्यों बना हुआ है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट पेश है संतना पोंसिनो और अभी उदय के साथ।
2: अप्रैल 2013 में प्रकाशित मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस की प्रारंभिक रिपोर्ट ब्रिटिश न्यायविद यानी जुरिस्ट जेफ्री रॉबर्टसन द्वारा तैयार की गई थी। मानव अधिकार विशेषज्ञ रॉबर्टसन इसे तत्कालीन मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर लिखा था। इसका मुख्य उद्देश्य मीडिया कानूनों की समीक्षा करना और प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की जिम्मेदारी और नागरिकों की सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन रखने के लिए सुधारों का सुझाव देना था। रॉबर्टसन ने माना कि मॉरिशस में प्रेस जीवंत और विविध है, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पुराने कानून आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। रिपोर्ट में उन मुश्किलों का भी उल्लेख किया गया है जिनका सामना पत्रकारों को करना पड़ता है, जैसे कि लंबी और महंगी अदालती कार्रवाई का दर, विभिन्न दबाव और एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी। रिपोर्ट एक अहम सवाल उठाती है, जब दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पत्रकार खुद व्यवस्था की कमियों के कारण असुरक्षित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन बोलता है? ये रिपोर्ट केवल पत्रकारों के लिए नहीं है। इनमें उन नागरिकों की समस्याओं को भी उठाया गया है जिन्हें किसी समाचार या फिर लेख से नुकसान पहुंचता है। ऐसे नागरिकों के लिए न्याय पाना फिलहाल बहुत लंबा और खर्चीला काम है। रॉबर्टसन की सबसे प्रमुख सलाह एक स्वतंत्र मीडिया ओम्बड्स ब्यूरो बनाने की है। इनका काम जनता की शिकायतें सुनना, सुधार करवाना और समाचारों में नैतिकता को बढ़ावा देना होता है। इसे राजनीतिक नियंत्रण के बजाय एक स्व नियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन तंत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के 13 साल बाद भी इसकी कई मुख्य सिफारिशें अधूरी है। मीडिया ओम्बड्स पर्सन का गठन, कानूनी सुधार और सार्वजनिक सूचना तक बेहतर पहुंच जैसे मुद्दे आज भी केवल बहस का हिस्सा बने हुए हैं। यह दिखाता है कि साल 2013 में उठाए गए सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
0: सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त द्वीप के लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान को मंजूरी दी है। इस योजना में सर्कुलर इकोनॉमी की ओर परिवर्तन, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, रिसाइकलिंग को मजबूत करना और जागरूकता अभियान चलाने का प्रावधान है। मॉरिशस में प्लास्टिक प्रदूषण अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कचरा सड़कों, नदियों और लगून में जमा हो रहा है जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को खतरा पहुंच रहा है। हर दिन बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पहले से ही भरे हुए हैं मार्शिकोस लैंडफिल में पहुंचता है। रिसाइकल जैसी पहल लोगों को कचरे की छंटाई, संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके बावजूद चुनौतियां अब भी काफ़ी बड़ी हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनिए रिसाइकल की मैनेजर स्टेफानी जाके को। उन्होंने निर्मा नारायण रेड्डी से बात की। पूजा सुकालू का विवरण।
3: Ben, dernier chiffre qui nous gagnait depuis le ministère de l'Environnement peut montrer qu'il de moins en moins peut récupérer des déchets plastiques.
4: पर्यावरण मंत्रालय से जो हालिया आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है इससे पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक कचरों को इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो स्थानीय रिसाइकलिंग के लिए हो या निर्यात के लिए। जो प्लास्टिक कचरा हमारे टापू पर या मार्शिकोज में पाया जा रहा है इनमें रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग प्लास्टिक दोनों हैं। प्राथमिक स्कूलों में चेतना अभियान चलाना, चौथे साल के लिए इस प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
3: Stella nous touche ban élèves de grade 5 et de grade 6 dans toute ban école primaire publique et semi-publique de Maurice et nous essayons montrer ban enfants l'importance de faire le tri.
4: मॉरिशस के पब्लिक स्कूलों के ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के छात्रों को हम इस परियोजना पर सचेत करा रहे हैं। छात्रों को कचरे का सही तरीके से छंटाई करने के लिए प्रोत्साहित करना ही हमारा उद्देश्य है, विशेषकर प्लास्टिक कचरे को लेकर, ताकि ये हमारे पर्यावरण को दूषित न करे।
3: Pour éviter que bande déchets recyclables, surtout bande déchets plastiques, atterrissent dans la nature et dans le dépotoir de Marchicos.
0: जब से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम वाली प्रणाली शुरू हुई है तब से आंकड़ों के अनुसार दर्ज किए गए कुल 6,700 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से जुड़े हैं। इसी कारण मंत्रिपरिषद ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत सजा को और सख्त करने की मंजूरी दे दी है। मंत्री उस्मान महमूद ने बताया कि इस साल जनवरी में सिस्टम लागू होने के बाद से सुरक्षा के हालात सामान्य रूप से स्थिर रहे हैं। इसके बावजूद इस विशेष उल्लंघन के लिए पेनाल्टी पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। माधवी जगन्नाथ, करुणा लालू।
5: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने एक बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, दर्ज किए गए 6,400 यातायात उल्लंघनों में से लगभग 17% मामले इसी से जुड़े हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कैबिनेट ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत दंड को और सख्त करने को मंजूरी दे दी है। 50-60% लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, लॉरी सब में देखा गया है। खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की जान जोखिम में डालती है। रास्ते पर बहुत

0: दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर फोन के कारण। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, सोचता हूं अच्छा फैसला है। चालकों से अपील करूंगा, खासकर बस ड्राइवरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोगों की जाने हमारे हाथों में होता है, हमारी भारी जिम्मेदारी होती है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले पेनल्टी पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 अंकों के बीच था। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा, सभी जानते हैं कि जब ड्राइवर मोबाइल का उपयोग करता है तो खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अंक बढ़ाने का फैसला किया। अब ये 5 से शुरू होता है, 28 दिनों में अदायगी नहीं की गई तो 10 अंक हो जाएंगे और जुर्माना भी दुगना हो जाएगा। ये स्पष्ट करूंगा कि 33 उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं बढ़ा है, केवल अंक बढ़े हैं। अतः गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इस कदम का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। ये उल्लेख है कि इस साल के जनवरी महीने से पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली लागू होने के बाद से सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में सामान्य स्थिरता देखी गई है। सरकार अगले सप्ताह से रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि ये नया प्रावधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
1: और विदेशी खबरों में, हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के सम्मुख उतरे और उन्हें उनके संबंधित देश में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री में वायरस के लक्षण नहीं थे। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि उनका आम जनता से कोई संपर्क नहीं होगा। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहिली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:29 पर सूरज निकला है। शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा।

बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होंगे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी की विशेष रिपोर्ट में संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया गया है। राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में पीएसी के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। और विदेश में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें काडिया का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद दें।

0: देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्यामा रिधा के घर नेहरू रोड गोकुला से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 42 साल के 42 ईयर ओल्ड के श्री संजीव पुरन, जो जिबुत राजीव से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके भाई मनोज कुमार पुरन के घर रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर मारिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। लुबिन लेन पिचित रिविया में 55 साल की 55 ईयर ओल्ड की श्रीमती बिडवंती लुबिन, जो फिया से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लुबिन लेन पिचित रिविया से उठाकर सेंट जॉर्ज पिचित रिविया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शिवाला रोड मोताई ब्लाउश में 90 साल की 90 ईयर ओल्ड की श्रीमती ग्वांती सावन, पैदाइश नाम की तारत और जो ग्वांती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे सुधीर प्रदीप सावन के घर शिवाला रोड मोताई ब्लाउश से उठाकर पिछिपा के मोताई ब्लाउश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड लाल माटी में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री सच्चिदानंद रामास्वामी, जो सत्यानंद कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के घर रॉयल रोड लाल माटी से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मुसलमान VRS ग्रांड पॉइंट पीमा में सैमोटें दुकान के पास 44 साल की 44 ईयर ओल्ड की श्रीमती गायत्री दानी, पैदाइश नाम नंदू और जो अनुष्का से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पति राकेश डानी के घर मुसलमान VRS ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर पॉइंट बिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49 ईयर ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद, पैदाशी नाम मंगुत्रोई और जो सुविना से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके घर जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दुफ्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। इलोट कॉन्चाबल में 92 साल की 92 ईयर ओल्ड की श्रीमती काइसिया, जो लीलो से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे आनंद शिवदीन के घर इलोत कॉन्चाबल से उठाकर कॉन्चाबल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। दुखी रोड ग्रांड रिट्रेट में 28 साल की 28 ईयर ओल्ड की कुमारी विदुषा रितु, पैदाइश नाम सिगुलाम और जो विदु से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति अक्षय रितु के घर दुखी रोड ग्रांड रिट्रेट से उठाकर बुनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जॉर्ज रैंकिंग स्ट्रीट ग्रांड पॉइंट पीमा में 82 साल की 82 ईयर ओल्ड की श्रीमती सूर्यवती बिसेसर, पैदाश नाम नित्या और जो रंभा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके घर जॉर्ज रैंकिंग स्ट्रीट ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर पॉइंट पीमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।
क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: RM2, Radio Musty, in the mix.
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2,
0: Radio Musty.
2: न्यूज फ्रेंड्स, आपसे हमने एक सवाल किया था और हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया एंड आपसे सवाल किया, व्हाट शुड अ पेडेस्ट्रियन डू बिफोर क्रॉसिंग एट अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। सही जवाब क्या है? सही जवाब है, यू शुड स्टॉप, लुक राइट लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। एंड यहाँ पर हमें सही जवाब दिया है, साथ में ये भी कहा है कि आपको वेट करना चाहिए, जब ग्रीन लाइट आए तब आपको जाना चाहिए। तो सही जवाब हमें किसने दिया है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जवाब आए हैं लेकिन लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है इनका। सो आप हैं रेनू फ्रॉम पिचिगाफ्रे, थैंक यू सो मच रेनू जी, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ऐसा ही करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। एंड मेक श्योर कि जब आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, तो यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू लुक राइट लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, फिर आपको क्रॉस करना पड़ता है। और जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको भी कहेंगे, भाई आप भी जरा आराम से अपने लाइट्स, अपने टाइम का बिल्कुल आप वेट करें, फिर उसके बाद आप गाड़ी चलाएं। तो इसी के साथ रेनू जी आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको मिल रहा है एक गुडी बैग। जी हाँ, एक गुडी बैग जो आपको कलेक्ट करना है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देंगे हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, जो आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ सेफ ड्राइविंग, बी केयरफुल ऑन द रोड, और नेक्स्ट गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम। थोड़ी देर में होने वाला हमारा बर्थडे ऑफ द डे, भूलिएगा नहीं।

0: ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा बर्थडे ऑफ द डे हम सेलिब्रेट करते हैं रोज लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपके लिए लेकर आते हैं आपका एक सरप्राइज। डोंट फॉरगेट, जिस इंसान का बर्थडे है आज उसका नाम और उनका फोन नंबर जरूर भेजिए ऑन 5491294।
1: रेडियो मस्ती।
2: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Une sélection de jus Fan Juice 1 litre à 79,95 roupies et 3 kilos de lessive en poudre d'Ethos à 149,95 roupies. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
3: On est tous winners!
1: RM2 Radio Musty. Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musty feels a musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
0: Radio Musty.
3: एंड इज फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिनका बर्थडे है हम उनको कॉल करें, उनको सरप्राइज़ करें, लेकिन कभी कभी होता है फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा काम है आपको बर्थडे विश करना। तो चलिए देखते हैं कि आज लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम किसको खुश करने जा रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं शीतल जानकी को, उनके बर्थडे पर उनके मम्मी शीला की तरफ से, जो भेज रही है बहुत सारा प्यार।
4: From Radio Musty.
3: उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा सरप्राइज आपको जरूर पसंद आया होगा शीतल जी। एंड आज आपका जो दिन है वो बहुत बहुत बहुत प्यार से भरा, बहुत ही सरप्राइजेस से भरा होगा, बहुत गिफ्ट से भी भरा होगा। सो शीतल को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे पूरी टीम की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ यहाँ लोलो हाइपर मार्केट आपको बहुत सारा प्यार के साथ साथ आपके लिए भेज रहे हैं एक छोटा सा गिफ्ट भी। और उम्मीद करती हूँ कि उसको कलेक्ट करने के लिए आप MBC ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल। आपके पास दो दिन का वक्त है। एंड रिमेंबर, ब्रिंग योर आई कार्ड। और जब भी आप लोग अपना बर्थडे जो है हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिमेंबर जिस दिन बर्थडे है उसी दिन आपको आपका फोन नंबर भेजना होता है और उनका नाम। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे शीतल जी, हैप्पी बर्थडे।
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, मॉर्निंग बीट RM2
0: रेडियो।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: And yes, Monday 11th of May, चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है आजकल. हमारे दोस्त अरविंद कुछ ज्यादा ही बात करें इस टीम के बारे में. चलिए जानते हैं अरविंद से. गुड मॉर्निंग अरविंद.
5: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 listeners. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. धीरे धीरे हॉली हॉली आर्सेनल लीग टाइटल की ओर, पर समस्या गंभीर. प्रीमियर लीग टाइटल और रिलीगेशन वाओ के एक फैसले पर. शायद ये प्रीमियर लीग में वाओ का सबसे बड़ा फैसला था जो आर्सेनल को टाइटल दिला सकता है और वेस्ट हैम यूनाइटेड को रिलीगेट करवा सकता है. वेस्ट हैम यूनाइटेड 0 आर्सेनल 1. सेकंड हाफ में जाकर थ्रोसार्ड के एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल बना. ये 83rd मिनट पर रहा. फिर इंजुरी टाइम में वाओ का एक ड्रामा. कैलम विल्सन ने इक्वलाइज किया पर लंबे वाओ रिव्यू पर गोल डिसअलाउ किया गया, नहीं दिया गया गोलकीपर पर फाउल. आर्सेनल की जीत जिससे अब द गनर्स टाइटल के बहुत करीब हैं और अनलकी वेस्ट हैम यूनाइटेड रिलीगेशन के करीब. आर्सेनल एक मैच ज्यादा खेलकर मैनचेस्टर सिटी से 5 अंक आगे है. गोल डिफरेंस भी +2 आर्सेनल के हक में. मैनचेस्टर सिटी के लिए अभी 3 मैच बाकी हैं. 13 मई को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ होम मैच होगा. फिर चेल्सी के यहाँ जाना है और सीजन का आखिरी मैच बोर्नमुथ के खिलाफ. आर्सेनल के लिए 18 मई को बर्नले के खिलाफ होम मैच. फिर आखिरी मैच होगा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ. इसके बाद चैंपियंस लीग का फाइनल 30 मई को. देखा जाए तो आर्सेनल के सामने हैं 3 फाइनल, 2 टाइटल जीतने के लिए. कल खेले गए बाकी 3 मैच ड्रो गए. बर्नले 2, एस्टन विला 2, क्रिस्टल पैलेस 2, एवर्टन 2, नॉटिंघम फॉरेस्ट 1, न्यूकासल यूनाइटेड 1. लीग टेबल में आर्सेनल और सिटी के बीच अभी 5 अंकों का फासला. मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे स्थान पे हैं, उसके 6 अंक पीछे आते हैं लिवरपूल और एस्टन विला. एस्टन विला कल अपना मैच ड्रो करके लिवरपूल को पार नहीं कर पाया. इनसे 4 अंक पीछे हैं बोर्नमुथ 6 स्थान पे. फिर आता है ब्राइटन जो बोर्नमुथ से 2 अंक पीछे हैं. इस सीजन 6 स्थान यानी 6 प्लेस भी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के लिए काफी हो सकता है अगर एस्टन विला टॉप 4 से बाहर हो और उधर यूरोपा लीग जीत जाए. नीचे नॉटिंघम फॉरेस्ट बच गया रिलीगेशन का आखिरी मनहूस टिकट. टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच होगा. वेस्ट हैम अभी टोटनहम हॉटस्पर से 1 अंक पीछे हैं. 1 मैच ज्यादा खेलकर आज लीड्स खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ. टोटनहम हॉटस्पर को भागने का एक अच्छा मौका है. इसके बाद चेल्सी टोटनहम हॉटस्पर का स्वागत करेगा और टोटनहम हॉटस्पर का आखिरी मैच होगा एवर्टन के खिलाफ. वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए बचे 2 मैच न्यूकासल अवे और लीड्स होम. स्पेन के एल क्लासिको जीतकर बार्सिलोना ला लीगा का चैंपियन बन गया. बार्सिलोना 2, रियल मैड्रिड 1, रियल मैड्रिड 0. राशोद का एक जबरदस्त फ्री किक एक गोल. फिर फेरान टोरेस ने फर्स्ट हाफ में ही दूसरा गोल स्कोर किया. 3 मैच अभी बाकी हैं पर बासा अपना 29th टाइटल जीत गया. कल के खेले गए अन्य मैचों में मालोका 1, विलारियल 1, एथलेटिक बिलबाओ 0, वेलेंसिया 1, ओविएडो और रेताफे के बीच मैच ड्रो 0-0. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक 3, रेंजर्स 1. ओल्ड फर्म डर्बी में सेल्टिक की जीत. सेल्टिक अब हार्ट्स से केवल 1 अंक पीछे हैं. जर्मनी में हैमबर्ग 3, फ्रीबर्ग 2, एफसी कोल्न 1,

0: Heidenheim Thien, Mainz 05 एक Union Berlin Thien. इटली के सेरी आ में इंटर मिलान तो पहले से ही सेरी आ टाइटल जीत चुका है. कल एसी मिलान की हार हुई, अटलांटा ने उसे हराया 3-2 से. एएस रोमा की जीत हुई 3-2 से पार्मा के खिलाफ. फ्लोरेंटिना 0 जेनोवा 0, क्रिमोनेजे 3 पिसा 0, वेरोना 0 कोमो 1. फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन लगभग जीत गया टाइटल, कल उसकी जीत हुई 1-0 से ब्रेस्ट के खिलाफ. अन्य मैचों में रेन 2 पेरिस एफसी 1, टूलूज 2 लियों 0, मोनाको 0 लिल 1, मेट्स 0 लोरियन 4, मार्सेई की जीत ले हावर के यहां 1-0 से, ओसेर 2 निस 1, एंजे 1, स्ट्रासबूर 1. पेरिस सेंट जर्मेन और लांस के बीच अभी 6 अंकों का फासला है, खेलने हैं 2 मैच. पेरिस सेंट जर्मेन दोनों मैच हार कर भी चैंपियन बन सकता है क्योंकि उसका गोल डिफरेंस कहीं ज्यादा बेहतर है. इंडियन सुपर लीग में कल केरला ने मोहम्मदन को 3-1 से हराया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की भी जीत हुई चेन्नई पर 4-1 से. यहां पर ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और जमशेदपुर 21 अंक लिए पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. टेनिस, इटालियन ओपन में आज राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 32 के मैच खेले जाएंगे. लड़कों में होम फेवरेट यानिक सीना खेलेगा पोपिरिन के खिलाफ, कोबोली वर्सेस टिरांटे. लड़कियों में कोको गोफ, योविच, क्रिस्टिया, मोस्कोवा, श्वाते खेलेगी ओसाका के खिलाफ. क्रिकेट, आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की हार की यात्रा जारी है. इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया. मुंबई की इनिंग्स में फिर से स्काई यानी सूर्य कुमार यादव फ्लॉप निकला डक आउट. रोहित शर्मा 22 रन बना पाया, तिलक वर्मा टॉप स्कोर कर पाया 57 रन 57 रन. भुवनेश्वर 4 विकेट ले पाया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली भी बिना रन बनाए आउट हुआ डक आउट पर. क्रुणाल पांड्या 73 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जितवा पाया. चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स पर 5 विकेट से. अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, इन सभी के पास 14 अंक हैं. फिर आता है पंजाब किंग्स 13 अंक, चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंक और राजस्थान रॉयल्स 12 अंक. आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है. और मॉरिशस में लोकल फुटबॉल में लक्यू वेव्स का डबल, इस बार एमएफए कप जीत पाए फाइनल को 2 में आईएसपीएल देमिल के खिलाफ. स्कोर 1-1 रहा पेनाल्टी पर, 10-9 से लक्यू वेव्स जीत पाए. सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें. बाल बाल बचा आर्सेनल, वार ने बचा लिया. अब 2 मैच बाकी हैं, 5 अंकों का गैप है. धीरे धीरे आर्सेनल चला टाइटल की ओर. देखते हैं आगे क्या होगा. अभी के लिए नमस्कार. आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन. हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती. बाय बाय.
1: थैंक यू अरविंद. हैव अ गुड डे.
2: Qualité déco, piano sous, sous méga sales pour 2 semaines seulement. Mob à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, sanitaire à portière 3500 roupies, porte laminé et SPC. Avec la pause gratuite s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Qualité déco et n'a tout pour décoration intérieure, extérieure, recette parvis décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles salle de bain et beaucoup les autres encore. Visite-nous tous showroom à travers l'île. Fast type de paiement disponible. Plus renseignements, l'autre page Facebook, Qualité déco.
3: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: Welcome to Radio Musti.
5: Check this out.
4: The latest news and the greatest mix of music.
6: Radio Musti feels a musti.
7: RM2.
4: Radio Musti.
8: Tech Mag, powered by 365.
9: Bien plus encore.
10: Artificial intelligence is moving fast, but Hollywood is starting to draw a line. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences has announced that AI-generated performances and scripts will not be eligible for Oscars. The new rules, which take effect from 2027, make it clear. Awards must go to human-created work. Filmmakers can still use AI tools, but fully synthetic actors or scripts written by AI won't qualify for top honors. The decision comes as the industry faces a new reality. In an upcoming film, actor Val Kilmer, who passed away in 2025, will will appear on screen through AI despite never filming his scenes. And more recently, a viral video created using AI showed a highly realistic fight between Tom Cruise and Brad Pitt generated from just a simple text prompt. These technologies are raising serious questions. If AI can create actors, scenes, and even

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 8 बजे हैं। भोजपुरी समाचार में आप सबको की स्वागत बा। ये गो ऐसा आयोजन है जेकर घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो और उनकर फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माक्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के दौरान कर ले रलन। दू बरिस के बाद अब 30 से जस्ती अफ्रीकी देश के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख ई सोमवार से केन्या के राजधानी नैरोबी में आयोजित हुई होला अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित होल हवन सा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी एकर में शामिल होल हवन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लियन, जब सब नेता लोग विभिन्न गोलमेज बैठक में भाग लियन जा। इस दौरान ठोस प्रतिबद्धता करल जाए जमे समानता पर आधारित गो नवा फ्रांस अफ्रीका साझेदारी के मजबूत रूप देवी जाय सकी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात के नैरोबी पहुँचलन। उ अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेवत हवन जोन अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी के मजबूत करे के उद्देश्य से एगो रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याता हवाई अड्डा पर पहुँचला पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले प्रधानमंत्री के स्वागत करलन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस से भी एगो छोटा मुलाकात करल।

0: जुन खुद केन्या में मौजूद हवन। पुर्तगाली राजनयिक ई अवसर पर मॉरिशस की सराहना करलन और बोलन की ये गो आदर्श और उत्कृष्ट देश है। अपन ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम अंटोनियो गुटेरेस के संगे अपन मित्रता के याद दिलैलन और बोलन की हमेशा उ मॉरिशस की मदद करे खातिर तैयार रहेला। अरकाल शिखर सम्मेलन से पहले स्ट्राथमोर यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज विचार विमर्श और बहस के पहले चरण के शुरुआत करल गल। एकर केंद्र में एगो मुख्य विचार रहल, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श कौन प्रकार हुआ था और एकर पर सवाल उठावल गल। ई पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन बगल से आयोजित करल गल। सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पवियन में लगभग 50 संगठन से जुड़ल शोधकर्ता, कलाकार और परियोजना संचालक के संगे आनल गल, जमे उ लोग अपन अनुभव और प्रस्ताव के आदान प्रदान कर सकें। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के देश में अनुपस्थित हुई के दौरान कल सांझ से आहिया नावामागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद संभालत हवन। ई मॉरिशस के इतिहास में पहला हला है। जेंडर इक्वालिटी मंत्री से पहले भी ढेर महिला लोग अपन हमनी के संस्था के द्वार खोल ले हवन सा। मागी देनीस मौशों के 1963 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त करे होला पहला महिला बनावल गल रहल। आर राधा पुनुस्वामी 1975 में पहला महिला बनल रलन जोन सांसद के रूप में निर्वाचित होल रलन आर एकर तुरंत बाद मंत्री पद संभल ले रलन। एकर अलावा 2014 में माया हनुमान जी राष्ट्रीय सभा के पहला महिला स्पीकर बनल रलन और 2015 में अमीना गरीबा के मॉरिशस के पहला महिला राष्ट्रपति बनल रलन। दवाई के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के विशेष रिपोर्ट संसदीय समिति के अंदर तनाव पैदा कर दिलेबा। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर शिरीन अमीरुद्दीन सिफरा के भेजल गलेगो पत्र में पीएसी के 5 गो सदस्य समिति के अध्यक्ष अधियन जुवाल पर आरोप लगेले हवन स कि वो अपन सार्वजनिक टिप्पणी में रिपोर्ट के राजनीतिक उपयोग कर लेबा, जबकि वो दस्तावेज के निष्कर्ष और सिफारिश के प्रति अपन समर्थन भी दोहराइले हवन। अपन ओर से अधियन जुवाल याद दिलेले हवन की रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनावल गल रहल आर उबुलन की सिफारिश के लागू करे के तत्काल आवश्यकता पर जोर दे के उनकर कर्तव्य है। आर दूसर देश के खबर में फ्रांस के प्रधानमंत्री बोले हवन की एमवी होंजस के 5 गो यात्री के आवत सूचना ले पेरिस में क्वारंटाइन में रखल जाए। ई फ्रांसीसी नागरिक उ सब 90 से जस्ती पर्यटक में शामिल हवन सा जे लोग के काल डच जहाज से घर वापस भेजल गल। ई जहाज काल फजिर से पहले कनारी टापू के तट पर लंगर लगेले रहल। ई जहाज पर यात्रा करे होला 3 गो यात्री के मौत हो गल बा, जेकर में से 2 गो के वायरस से संक्रमित हो के पुष्टि होल बा। एकरे संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबके के नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Morning Beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: A very good morning, एक बार फिर से विनीता की ओर से आप सबों का स्वागत है मंडे 11th of May. कैसे हैं आप? सुबह के 8:09 हुए हैं और मैं विनीता आपके साथ बस 9 बजे तक हूँ. और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आप लोग हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं 1549 1294. किसी को हाई, किसी को हेलो, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है, बस आपके मैसेज भेजना और फटाफट आपका जो पैगाम है भेज देंगे उनके नाम. और अभी के लिए फ़िलहाल समय हो गया है ये जानने का कि आज मंडे है. मंडे में जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जानना चाहिए कि आज का मौसम कैसा रहेगा, उसके हिसाब से तो लोग घर से निकलते हैं. वैसे छाता हमेशा साथ में रखना चाहिए, लेकिन फिर भी गीता जी से सुन लेते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा.
3: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
4: ऑन इट टू स्विनर्स.
5: बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहेली इलाकों पर 28 से 30, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहेली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी. पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा. दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:29 पर और शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा.
3: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
6: Envie de vous faire plaisir.

RM2, Radio Musty, in the mix.

लगता है हमारी ये वाली सिंगर थोड़ा थक गए हैं। और सोनू जी, आप तो कितने सालों से गा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गाने के साथ। यस, एंजॉय दिस वन। ड्राइव कर रहे हैं तो बस गुनगुनाते चलिए।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, कभी कभी आप अपने आप पे शक करते हो। आप ये कहते हो कि भाई, हमने तो ज़िंदगी में हमेशा अच्छे ही काम किया है, हमने तो कभी किसी को रुलाया नहीं, हमने तो हमेशा यही कोशिश की है कि हम प्यार बांटते चले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिलता है और हमें रुलाने वाला इतना खुश रहता है, वो तो ज़िंदगी के हर एक मज़े लूट रहा है। पता है दोस्तों, कर्मा तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है ना, तो जो दर्द देकर हंस रहे हैं, कल वही दर्द उनको समझ में भी आएगा। किसी का दिल तोड़कर, किसी को रुलाकर, किसी के फीलिंग्स का मजाक बनाकर, किसी के अपने तोड़कर, किसी को धोखा देकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ज़िंदगी को सब याद रहती है, किसने किसको कितना रुलाया, किसने किसको कितना दर्द दिया और किसने किसका बस हमेशा साथ दिया।

0: किसी का दिल साफ होना तो उनको बददुआ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आंसू आपने आज बहाए हैं ना, जो इंसान आपको रुलाता है, कल वही आंसू वो दोबारा फिर से बहाएगा। और बस इतना कहूँगी कि लाइफ में जो भी होता है ना, उसको एक पन्ने की तरह बस पलट दो और एक नया चैप्टर अपने ज़िंदगी की शुरू करो, क्योंकि जिसने जो किया उसको एक ना एक दिन वो दर्द जरूर मिलेगा जो उन्होंने आपको दिया है।
1: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
5: Welcome, welcome to RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
7: Hit music only.
6: Feels a musti.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: सुबह के 8:30। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हो आप? वैसे तो गाड़ी चला रहे हैं, मैं जानती हूँ मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है ना, या मैंने विटनेस किया, डोंट वरी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कितना भी कुछ भी कर लो, आप गुस्सा कर लो, आप कुछ भी करो, इधर उधर की बातें भी कर लो, लेकिन गाड़ी है जहाँ वो वहीं पे रहेगी, वो आगे जाएगी नहीं। इसीलिए बेटर इसी में है कि आप हमारे साथ जुड़े रहो, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनो, कम से कम आपका मूड तो अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना कि मंडी में मूड अच्छा होना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके मूड को एकदम मस्त बनाने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए। गाने भी ऐसे ही लेकर आती हूँ, कुछ ऐसे जिसे सुनकर आपको भी अच्छा लगे। ये वाला गाना जो अगला मैं लेके आ रही हूँ ना, इसको सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि इस गाने में है रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, गाड़ियाँ रुक रुक के चल रही है ना। चलो एंजॉय करो।
0: Morning Beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: And yes, चलिए आई होप कि आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया होगा. और जैसा हम हमेशा कहते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए. थोड़ा सा तो इधर उधर भागे होंगे, भागना ज़रूरी होता है मेरे दोस्त. और मॉर्निंग की शुरुआत तो हम हमेशा एक ग्लास गर्म पानी के साथ ही करते हैं. जो हमारी बॉडी होती है ना, वो डिटॉक्स हो जाती है और हमारी जो डाइजेशन है वो बेटर रहता है. ठीक है, तो आपसे याद करना. और वैसे भी सर्दी का मौसम है तो गर्म गर्म पानी पीने में सुबह में बड़ा मज़ा आएगा, है ना. आजकल हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए एक मैसेज यही है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं प्लीज़ आप मोबाइल यूज़ ना करें और सड़क पे ध्यान दीजिएगा. अभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ लोग अगर आपके साथ होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं उनके बगल में लोग बैठे होते हों और दोस्त हो या कोई भी हो, लेकिन फिर भी वो मोबाइल पर ही बात करते रहते हैं. अरे भाई, ये आपका एक ऐसा समय होता है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी बात कर सकते हैं. लेकिन आजकल यही देखा जाता है कि गाड़ी में अगर ड्राइवर हैं और तीन लोग बैठे हैं तो ड्राइवर से कोई बात ही नहीं करता, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड. देखा, अभी अभी आपको याद आया ना कुछ. हाँ, वही मैं सोच रही थी कि अभी तक आपने मोबाइल को अंदर बैग में क्यों नहीं डाला. हंस रहे हो, हंसना चाहिए, अच्छी बात है. लेकिन मैंने सच्ची बात कही है, चार लोग एक साथ बैठेंगे लेकिन फिर भी कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, अपने मोबाइल से ही बात करते रहेंगे. अरे, मौके का फ़ायदा उठाओ, बाहर का नज़ारा देखो, आँखों को थोड़ा सीखो और मूड बना रहता है. इससे ग्रीनरी देखते हैं ना तो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है. चलिए, अभी के लिए दिमाग के लिए क्या अच्छा होता है ये तो आपको भी पता है. वी हैव द बेस्ट म्यूजिक फॉर यू. चलते चलते यहाँ पर करते हैं डैड को वेरी हैप्पी बर्थडे है मिस्टर आनंद अबुले होज फ्लाक, उनकी तीन बेटियों की तरफ से, उनकी वाइफ कमला और उनकी पूरी फैमिली की ओर से. हैप्पी बर्थडे जी.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: हल्का हल्का सा ये नशा जी, बिल्कुल एक्चुअली हमारा आप साथ में हैं और साथ साथ ऐसे गुनगुनाते रहेंगे। गाना अच्छा था ना, थोड़ा रिलैक्सिंग था, ऐसे फील हुआ जैसे

0: भाई क्या काहे का स्ट्रेस लेना, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हमारी, बस टाइम दे दो अपने आप को, सब कुछ हो जाएगा, जो होना होता है वो होके ही रहता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस अपनी तबीयत पे ध्यान दो, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे बीपी हाई ऊपर नीचे हो जाएगी तो हाई हाई हो जाएगी, इसीलिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वैसे जैसे हमारा घर यहाँ पर खिला खिला सा रहता है, यहाँ पर हर कोई आता है अपने मूड के साथ आता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताता है जिससे कि हम सब खुश हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकास का भी वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग विकास।
1: गुड मॉर्निंग,
0: हाउ आर यू डूइंग?
1: देखो वीकेंड के बाद मंडे की स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो होती है
0: ना।
1: हाँ, थोड़ी सी हैवी होती है, और जब थोड़ी सी बारिश हो रही है, बादल छाए हो, तो फिर यू नो इट्स नॉट इजी अपनी मोटर को स्टार्ट करना, ऐसा लगता है जैसे डीजल का इंजन है, धीरे धीरे गर्म होकर स्टार्ट होता है।
0: हाँ, अभी हम भी थोड़ा धीरे धीरे करके गर्म हो गए हैं, हम तो स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी गाड़ी आपको लेकर जानी है जो कि 9 बजे से शुरू होगा।
1: जैकेट वैकेट पहन के बिल्कुल सेट है लड़की,
0: अच्छा लगता है ना।
1: यस, दस्तक दे रही है, आप भी दस्तक दीजिए दिल भर और आने दीजिए भरपूर म्यूजिक।
2: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली। Feels a mystique.

0: हाँ जी, पहले घुंघरू तोड़े और अब पकड़ के ट्विस्ट। इसी ट्विस्ट के साथ मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं ना हमारे मॉर्निंग बीट में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे। थोड़ी देर में विकास निर्मणी आ रहे हैं लेकर आपके लिए हमारा अगला शो।
1: RM2 Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Masti.
3: सुबह के 9 बजे है।

0: सुध्या संक्षिप्त समाचार आपसे गीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, सभी को हमारा नमस्कार। खबरों में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमानुएल माको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान की थी। दो साल बाद अब 30 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्र नेता और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके दौरान ठोस प्रतिबद्धताएं की जाएंगी ताकि समानता पर आधारित एक नई फ्रांस अफ्रीका साझेदारी को मजबूत रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याता हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रसंघ महासचिव अंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। अपनी ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी मित्रता को याद किया और हमेशा मॉरिशस की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम से आर्या नावामागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। ये मॉरिशस के इतिहास में पहली बार हुआ है। और विदेशी खबरों में, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंडुरस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक उन 90 से ज़्यादा पर्यटकों में शामिल हैं जिन्हें रविवार को डच जहाज से घर वापस लाया गया। ये जहाज सुबह होने से पहले कनारी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुए थे। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

0: के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, mama got...
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
3: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, good morning. क्या हाल चाल निल मनी?
3: हाल चाल तो सब ठीक है.
2: हाँ, ये जरूरी है. देखो, ऐसा ही जब तक हाल और चाल में हो कमाल तो सब कुछ होता है धमाल पे धमाल. गुड मॉर्निंग मॉरिशस, क्या हाल चाल? वीकेंड के बाद रहता है याद कि काम तो अभी बाकी है, करे तो क्या करें. अलार्म ने फिर से अटैक कर दिया और इस बार मंडे ने एंट्री मारी है बारिश के साथ, थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ. तुम्हें मिली थोड़ी सी बारिश?
3: बहुत मिली.
2: हाँ, अच्छा, तुम वाइपर चलाती हो कि स्पीड बढ़ाती हो?
3: दोनों करती हूँ.
2: क्या बात कर रही हो, बिल्कुल गलत. ये बिल्कुल गलत. बहुत ध्यान से वापस चलाओ, लेकिन स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए. खाली म्यूजिक की स्पीड को पढ़ कर सकते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है ना. राइट, सो टेंशन नहीं लेने का क्योंकि अगले कुछ दो घंटे में फुल फिल्मी होने वाले हैं, फुल ऑन मस्ती और फुल ऑन वाइब के साथ. जहाँ पर अपडेट्स होने वाली है वहीं पर आज स्पेशल डे, राइट?
3: बहुत स्पेशल डे है. आज है वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे, जहाँ पर हमें ईगो को थोड़ा कम करना है और प्यार ज्यादा करना है क्योंकि जिंदगी शॉर्ट होती है और हमें ज्यादा स्माइल करना है.
2: इसलिए ईगो को कहो ई गो गो गो, जस्ट गो. ट्रैफिक हो, ऑफिस हो या बस स्टॉप पर कोई नया स्टाइल हो, जो भी हो चलने दो क्योंकि म्यूजिक भी है फ्री फ्लो.
1: RM2 रेडियो मस्ती,
0: हिट म्यूजिक ओनली.
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ, कोई बात कर रहा है? यस, बात कर ही रहा है अबाउट फुटबॉल. तुम देख रही थी फुटबॉल?
3: हाँ,
2: वीकेंड में.
3: हाँ, मैं देखा.
2: तुम खाली फुटबॉल देखती हो, फुटबॉल मैच देख लेती हो?
3: दोनों होता है.
2: अच्छा, इतने सारे प्लेयर्स भागते हैं कि गोल गोल करेंगे.
3: हाँ,
2: लेकिन बॉल तो पहले से गोल है, और कितना गोल करेंगे?
3: निदाना पड़ता है रन करने के लिए.
2: अच्छा, वो वाला गोल, जी ओ ए एल, यानी कि हिंदी वाला गोल नहीं. गोल गोल तुम्हें घुमाएंगे नहीं, ये बताएंगे कि यस, आर्सेनल गेटिंग वेरी क्लोज. अब बहुत ही कम मैचेस बाकी हैं. तुम किस टीम की फैन हो?
3: मैं नहीं बोल सकती बॉस.
2: अच्छा, ये लड़की ना बहुत कुछ छुपा लेती है. अच्छी बात
3: है.
2: चलो ठीक है, ठीक है. लेकिन यस, वेरी क्लोज, और यही चाहते हैं सिटी. ओह माय गॉड, अगर वो जीत जाएगी तो आर्सेनल मुश्किल में आ जाएगी. और वहीं पर आर्सेनल विला कुछ कमाल नहीं कर पाए कि लिवरपूल से ऊपर निकल पाए. बट एनीवेज, यूनाइटेड और लिवरपूल साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, संगे संगे वैसे चलते जा रहे हैं.
3: लेकिन साथ साथ हैं.
2: और अभी जो लड़ाई चल रही है वो सिटी और आर्सेनल के बीच में. ज्यादा मैचेस नहीं, और अब बहुत ही कम टाइम में खुलासा होने वाला है. चलिए, वहीं पर अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर भी कहानी चल रही है. आज जहाँ पर हो गई है एक और तारीख, वहीं पर आपको बताएं कि तारीख पे तारीख दे रही है तारीख कि पति पत्नी और वो आने वाली है. दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. इसके अंदर आयुष्मान खुराना है, सारा अली खान और वामिका गाबी, राकुल प्रीत सिंह, विजय राज और ऐसे और बहुत सारे सितारे हैं. लगता है ये थोड़ी फनी होने वाली है. क्योंकि हमने सुना है पति पत्नी और वो, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी और वो दो. क्या होगा? जो होना वो उन्हें होने दो. क्योंकि अभी बीटा उन्हीं खबरों के साथ साथ आपकी राशि और साथ साथ में कुछ गेम्स, कुछ और मस्ती रहेगी जारी. म्यूजिक की बारी.
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी और स्टार्स की मैजिकल सिग्नल्स के साथ वक्त हो गया है होरोस्कोप चेक करने का। तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज एनर्जी हाई रहेगी, बस आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। किसी पुराने फ्रेंड का मैसेज आपके मूड को बेहतर भी कर सकता है। लकी नंबर आपका है 9 और कल आपका है रेड।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज आप कंफर्ट और शांति को अट्रैक्ट कर पाएंगे। शॉपिंग या गुड फूड का मूड भी बन सकता है। लकी कलर आज आपका है ग्रीन और कलर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कम्युनिकेशन स्किल्स आज फुल ऑन शाइन करने वाली है। किसी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन से आपको फायदा हो सकता है। लकी कलर है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज इमोशनल आप फील कर सकते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। फैमिली टाइम हीलिंग होता है तो आप वो कीजिए ज्यादा। और लकी कलर है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज स्पॉटलाइट आपकी नाम रहेगी, कॉन्फिडेंस से काम लीजिए, लोग इम्प्रेस्ड होने वाले हैं। लकी कलर है गोल्डन, नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आज आपका सुपर पावर है। हेल्थ पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। लकी कलर है बेज और नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: बैलेंस मेंटेन करना जरूरी रहेगा। लव लाइफ या फिर फ्रेंडशिप्स में स्वीट मोमेंट्स भी मिल सकते हैं। लकी कलर है पिंक और नंबर आपका है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले आप बस ऑब्जर्व करना सीखो। लकी नंबर है 8 और कल आपका है ब्लैक।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: ट्रैवल या एडवेंचर का मूड बन सकता है। पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करोगे आप आज। लकी कलर है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: हर वर्क का रिजल्ट जल्दी मिलने वाला है, बस स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रखें। लकी कलर है ग्रे और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: क्रिएटिव आइडियाज आज माइंड में फ्लडिंग की तरह आएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट की बिगिनिंग भी हो सकती है। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज आपको बस दिल के सुनना है, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना है। म्यूजिक और सेल्फ केयर आज आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा। एंड कल आपका है समुद्री हरा, नंबर है 12।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ, तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें ठंड में और ठंड चाहिए?
3: हाँ, वो फीलिंग ही कुछ और होती है।
2: हाँ, ये सर बात है। वैसे काफी लोग कोशिश करते हैं कि ठंड के टाइम पर थोड़ी सी आइसक्रीम खाएं, लेकिन अपने गले को बचाएं बहुत जरूरी है। चलिए, हम ठंड की बात इसलिए करें क्योंकि अभी बात है टेक्नोलॉजी की। बता रहा मैं तुम्हें हेल बनी कि कैसे आप बिना बिजली के चला सकते हैं कुछ ऐसा जो कि आपके कमरे को ठंडा कर देगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी,
3: बिना बिजली के।
2: राइट, अभी एक आई है नेस्कॉड टेक्नोलॉजी, यानी कि नो इलेक्ट्रिसिटी या फिर सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। एक बहुत ही कमाल की एक शुरुआती स्टार्टअप है और ये जो टेक्नोलॉजी लगता है कि फ्यूचर की कहानी है। अब इसी खासियत यह है कि ना ही वो तो एसी की तरह महंगी हो सकती है और ना ही पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है और बहुत ही कमाल की बात है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नेस्कॉड ये जो तकनीक है, इसका मुख्य आधार जो बेसिस है बहुत ही नॉर्मल रसायन है जिसे अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। आमतौर पर इस रसायन का इस्तेमाल खाद यानी कि मैन्योर बनाने के लिए होता है। इस टेक्नोलॉजी में एंडोथर्मिक सिद्धांत प्रिंसिपल पर काम करते हुए नमक को पानी में खोला जाता है और ये आसपास की गर्मी को सोख लेता है, जितनी भी गर्मी होती है उसको सोख लेता है। और अब जो टेस्ट किए गए उसके दौरान देखा गया कि अमोनियम नाइट्रेट और पानी के जो मिक्स ने मात्र 20 मिनट में तापमान को 25 डिग्री से 3.6 डिग्रीज कर दिया।
3: वाओ,
2: मतलब इतनी प्रभावी है ये क्रिया कि बिना किसी मोटर या कंप्रेसर के जबरदस्त ठंडक पैदा कर सकती है। अब देखो, रिपोर्ट की माने तो ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि सोलर पावर काम करती है। गौर करने वाली बात यह है कि जब आप अमोनियम नाइट्रेट पानी में मिलाते हैं और साथ में घुलकर वो ठंडक पैदा करता है तो सिस्टम सोलर पावर की मदद से उस पानी को गैस बनाकर उड़ा देता है। तो आप

0: सकते हैं कि इसको भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी की तैसी होने वाली, यानी कि ऐसी की तैसी होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सोचना है कि क्या अच्छा है हमारी इस धरती के लिए, इस प्लैनेट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए ना। ठंडा रखो दिमाग को, ठंडा रखो, कूल कूल। म्यूजिक आपके साथ है, सब जाओ भूल भूल। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Musty Morning Show. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: भाई पप्पू की बात करें तो पप्पू का सीन कुछ चेंज होता रहता हर दिन। कहता यार छोटे थे तो मम्मी कितनी सारे ऑप्शन देती, बेटा ये खा लो, अच्छा नहीं क्या बना दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। हाँ तो शादी के बाद क्या हुआ? नहीं बीवी ने पूछा, उसने कहा कि तुम्हारे पास आज खाने में दो ऑप्शन है। तो जाके जब मैंने देखी प्लेट तो उसमें एक ही सब्जी, तो मैंने कहा एक ही सब्जी है, इसमें क्या ऑप्शन है? तुम कह रही दो ऑप्शन है। हाँ दो ऑप्शन है ना, खाओ या ना खाओ।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: सुबह के 10 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो अफ्रीका और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक मंच है। जोमो केन्याटा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी संक्षिप्त मुलाकात की, जो स्वयं भी केन्या में मौजूद हैं। पुर्तगाली राजनयिक ने इस अवसर पर मॉरिशस की सराहना करते हुए उसे एक आदर्श और उत्कृष्ट देश बताया। अपनी ओर से डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी मित्रता को याद किया और हमेशा मॉरिशस की मदद के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम से आगया नवा मागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। ये मॉरिशस के इतिहास में पहली बार हुआ है। और कल शिखर सम्मेलन से पहले स्टैटमो यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज ने विचार विमर्श और बहस के पहले चरण की शुरुआत की। इसके केंद्र में एक मुख्य विचार था, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श किस प्रकार निर्मित हो रहा है, इस पर सवाल उठाना। ये पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन द्वारा आयोजित की गई सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पवियन में लगभग 50 संगठनों से जुड़े शोधकर्ताओं, कलाकारों और परियोजना संचालकों को एक साथ लाया गया, ताकि वे अपने अनुभवों और प्रस्तावों का आदान प्रदान कर सके। और विदेशी खबरों में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंजस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक 90 से ज़्यादा पर्यटकों में शामिल हैं, जिन्हें रविवार को डच जहाज़ से घर वापस लाया गया। ये जहाज़ सुबह होने से पहले कनारी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुआ था। इस जहाज़ पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 2 के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। रॉयल रोड से चम्बिल थ्रियोली में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड की श्रीमती रुक्मिन रामसोहोई, पैदाश नाम राम गुलाम और जो सुभावती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर बामाशों तेरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: दस बजकर आठ मिनट हो चला है। वेलकम बैक।
3: हे यस, द मॉर्निंग क्रूज राइट एंड गुड गुड

0: मॉर्निंग आप सभी को मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम और ऐसे में काफी मुश्किल टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर वर्क और जितने भी लोग पहुंच गए वेरी द गुड और वहीं पर कई लोग काफी स्ट्रगल के बाद रखते हैं याद कि यार इतनी एनर्जी तो ट्रैफिक में निकल गई नहीं अब गरम गरम चाय पीकर कॉफी पीकर बिल्कुल सेट फॉर द डे यस लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स अ म्यूजिकल मंडे
1: एग्जैक्टली तो आप यही पर स्टे ट्यून्ड क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टिप्स होंगे स्टे ट्यून्ड जो आरएमजू रेडियो मस्ती
2: आरएमजू रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती

0: भाई मंडे उठा है फ्रेश स्टार्ट फ्रेश स्टाइल तो आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर अ क्लीन एंड कॉन्फिडेंट लुक। न्यूट्रल कलर्स जैसे कि व्हाइट बेज ब्लैक या फिर पेस्टल ब्लू आपको इंस्टेंटली वो क्लासी और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। गर्ल्स के लिए आप पेयर कर सकते हो फिटेड टॉप एक वाइड लेग पैंट्स या फिर जीन्स मिनिमल एक्सेसरीज उस एफर्टलेसली शीक स्टाइलिश वाइब के लिए। गाइज के लिए क्रिस्प शर्ट या फिर पोलो विद क्लीन स्नीकर्स आपको देगा स्मार्ट एनर्जी वाला लुक। स्टाइल रूल ऑफ द डे ड्रेस लाइक द अपॉर्चुनिटी यू वेटिंग फॉर इज ऑलरेडी लुकिंग एट यू एंड डोंट फॉरगेट कि कॉन्फिडेंस होता है बेस्ट आउटफिट तो उन्हें पहनिएगा जरूर एंड कीप शाइनिंग।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, it's time for some B-Time News.
3: Right, अगर B-Town से हम अगर B देओल को ले आए तो यानी कि बॉबी देओल, right? वैसे सनी देओल ने बहुत सारा प्यार दिया अपने एक्टर ब्रदर बॉबी देओल पर और उसको प्यार से कहते हैं लॉर्ड बॉबी. लॉर्ड बॉबी उनके काम के लिए. राइट, मूवी आ रही है उनका, उसका नाम क्या है?
2: बंदर.
3: किसके अंदर?
2: बंदर है.
3: बंदर
2: मूवी का नाम.
3: बंदर. ओके, आपको बताएं कि नेफ्यू जो है करण देओल वो भी घुस गया इसके अंदर, यानी कि एडमिरेशन क्लब के अंदर, और कहा कि बॉबी चाचा क्या फिनोमिनल आपकी लुक है. वैसे सनी देओल पहुंच गए सोशल मीडिया पर और शेयर करने लगे टीजर ऑफ बंदर.
2: एग्जैक्टली. और डायरेक्टेड है बाय अनुराग कश्यप, और आपको बता दें कि रिलीज होने वाली है 5 जून को.
3: अब भाई देखने के लिए इसको क्या पेड़ पे जाना पड़ेगा या थिएटर में? बंदर है ना.
2: पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि ये रॉ है, काओटिक है, अनकन्वेंशनल टोन भी है. ऑडियंसेस बहुत तारीफ कर दिया बॉबी देओल की.
3: राइट, और उसे भाई ने तो कह दिया, यानी कि सनी देओल ने, लुकिंग सो गुड माय लॉर्ड बॉबी. और वैसे अपने भाई के लिए कहा कि बहुत बहुत प्यार, एंड बस ये चाहता कि फैमिली का सपोर्ट मिलता रहे. टॉकिंग अबाउट द टीजर, बॉबी एक रेट्रो अवतार में नजर आ रहे हैं, एक डिस्को इरा स्टाइल, ग्रूविंग, एक री इमेजिन वर्जन है जैसे 1970s का कम ऑन बेबी दिल किसको दोगी. राइट, वैसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग स्टाइल में सामने आती रहेंगी, लेकिन बॉबी देओल आफ्टर एनिमल He's touched another level of stardom. चलिए, एक्टर ने अल्फा के अंदर भी एक एक्शन थ्रिलर डायरेक्ट की हुई है, यानी कि बॉबी की बात कर रहे हैं. फिल्म में है आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर एंड आर माधवन. ये कहते हैं फर्स्ट फीमेल लेड फिल्म होने वाली है, 7th इंस्टॉलमेंट इन आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स. तो बॉबी देओल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन बंदर चढ़ेगा तो जो तिरंगा है चौरंगा है ऊपर लहराएगा.
1: RM2 Radio Musti.
0: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: राइट बच्चे मन के सच्चे और ये हम जानते हैं, लेकिन बच्चों की बात करें तो उनकी साइकोलॉजी, जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं, सब कुछ अलग है ना, ब्यूटीफुल, इतनी इनोसेंस। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जैसे निर्मनी, छोटी सी बच्ची है, जब बाहर जाती है तो चुप चुप सी हो जाती है, है ना,
3: होना चाहिए, एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहिए।
2: नहीं, लेकिन किसके लिए तो बात करनी चाहिए ना। अब ऐसे कई बच्चे होते हैं जो घर में बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो थोड़े सेम से आते हैं, कुछ नए चेहरे उनको देखते हैं और जो नॉर्मल उनका बिहेवियर नहीं होता वो, यानी कि लगता है उनको कोई जज करेगा, ये कौन से लोग हैं, दे डोंट फील कम्फर्टेबल। तो ऐसे में ज़रूरी है कि माँ बाप उनसे थोड़ी सी बात करें और ये समझाएं कि तुम जैसे हो वैसे रहो, हाँ, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर। ऐसा नहीं कि घर में तुम उछलते हो कूदते हो सोफे पे चढ़ गए, यहाँ से वहाँ तो कहीं जाओ तो वो शुरू कर दो। हाँ, लेकिन थोड़ा समझना ये ज़रूरी है कि बी द वे यू आर, जैसे आपका व्यवहार है, जैसे आप हैं, क्योंकि ये किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहिए ना, फिर बच्चे बच्चे नहीं लगेंगे। राइट, हर बच्चे का लोगों से बात करने, घुलने मिलने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे पहले से नए माहौल और लोगों को ध्यान में रख लेते हैं और इसे खुलने में बहुत आसानी हो जाती है। छोटे बच्चों में ये बहुत आम सी बात है हा? कि वो सोचें कि कौन उनसे अच्छे से बात कर रहा है, कहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता है। इट्स सच अ सडन और इंस्टेंट रिएक्शन, है ना। और बाहर चुप रहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस की कमी है। कई बच्चे नए माहौल और लोगों को समझते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद ही घुल मिल जाते हैं।
3: इसलिए ऑब्जर्व करते हैं।
2: हाँ, एग्जैक्टली। तो ज़रूरी है कि आप उनको पहले छोटे बच्चों से मिलवाएं या फिर उन लोगों से मिलवाएं जो बच्चों को काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं, सो देर ऑलरेडी फील हैप्पी एंड जैसे लगे जैसे घर का माहौल है ना। और फिर जब ऐसी एक कम्फर्ट फैक्टर आ जाए तो सब कुछ ठीक। तो बस ये याद रखिए, कभी उनको बाहर जाकर शर्मीला ना बुलाएं। नए लोगों और मेहमान के सामने उनको थोड़ा टाइम दें, बात करने के लिए बच्चे पर दबाव ना डालें। छोटे छोटे सोशल इंटरेक्शन के लिए मोटिवेट कीजिए, घर पर थोड़ा सा वीडियोस बनाने, थोड़ी सी बातें करने और बच्चे में छोटे से प्रयास करने में भी उनकी तारीफ करें। वेल डन, अरे इट्स गोना बी सो मच मोर फन।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey guys, सभी के लिए it's time to read your messages and वैसे पीछे जो आवाजें आ रही है वो विकास कर रहा है.
3: अरे नहीं वो मैं थोड़ी सी जॉगिंग थोड़ी सी वॉकिंग एंड यू डू द टॉकिंग.
2: ओके मैं करती हूँ टॉकिंग. तो मैसेजेस पढ़ लेते हैं. आप हैं नौमी जी, आप मांग रहे हैं गाना भाभी भैया बहन. फैजा जहाँ बहु दीपशिका छोटे नवासी आन्या नवासा निहान वजी वंदना भैया बाबू बेटे के लिए गाना. एंड वी हैव एज यूजुअल हमारी बड़ी यालीश जो कनेक्टेड है सोवी नाम से.
3: उनको पुराने नए गाने सब कुछ बंद है. हे हे ओहो निकल पड़े निकल पड़े. देखिए मैं कहता हूँ कि कोई भी साथ हो कोई भी सफर हो कोई हो जर्नी म्यूजिक साथ है तो कोई फिकर नहीं.
2: Exactly.
3: और अभी कह रहे निखिल बिग हेलो टू यू टू द टीम मॉर्निंग टीम. और मेरे पर विजय साहब हमारे साथ दे रहे हैं मुंबई से हेलो. हॉट एंड ह्यूमिड जरूर है लेकिन म्यूजिक कूल कूल है. तो कहते हैं कि अभी थोड़े देर में लोकेशन चेंज करने वाला हूँ लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जरूर दूंगा. थैंक यू सो सो मच.
2: यस तो यही पर स्टे ट्यून्ड क्योंकि आपके लिए अमेजिंग गानों की बरसात है. तो लेट्स गो लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द म्यूजिक.
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: मुझे खींचे तेरी ओर, ऐसा चला तेरा
1: दौर, turn the volume up Mr. DJ,
0: मेरे के दिल करता है शोर,
2: turn up the volume, turn up the volume, turn up

0: RM2 Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Masti.
3: सुबह के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में भाग लेने के लिए एक सार्वजनिक निजी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का सह आयोजन केन्या और फ्रांस द्वारा किया जा रहा है। अपने आगमन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जम्मू केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अडेन डुआले ने स्वागत किया। नैरोबी के जम्मू केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई धरती पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का फैसला लिया। लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों हस्तियों ने अपने उत्कृष्ट संबंधों की समीक्षा की। यह अवसर मॉरिशस से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का भी रहा, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार शामिल थे। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एमबीसी को साक्षात्कार भी दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने सुशासन और लोकतंत्र के क्षेत्र में मॉरिशस को एक शानदार उदाहरण बताया, जबकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मॉरिशस को हमेशा मिलने वाले सहयोग का उल्लेख किया, विशेष रूप से हाल ही में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के संदर्भ में। रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 वर्ष बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत विवरण व्यवस्था। इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया, जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और विदेश खबरों में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पिचित्रिवियनो में 58 साल की श्रीमती किस्नावती मोइकू, पैदाइश नाम गोकुल और जो रानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। वे एवेन्यू बेलिल बॉम्बू की रहने वाली हैं। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे रॉयल रोड पिचित्रिवियनो की लाशापेल अदान दे मुरा से उठाकर गांधी पाल्मा काथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड सिचेमिल थ्रियोले में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड की श्रीमती

0: रुक्मीन रामसोहोई पैदाश नाम रामगुलाम और जो सुभावती से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चैमिल थ्रियोले से उठाकर बामा शांते अरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग मेरे वॉरियर्स, 11:10 हो चला है, मतलब काम भी चल रहा है और पेट भी क्वाइटली प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप स्क्रीन को 10 सेकंड से ब्लैंक स्टेयर कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस, आपके ब्रेन को ऑफिशियली नीड है स्नैक ब्रेक की। तो अगर भूख लगी है, पेट को रोचन आकर रेडू हैव समथिंग, म्यूजिक तो यही पर है आपके मूड को फीड करने के लिए, तो यही पर आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए।
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: बातें ये कभी ना तू भूलना कि कोई तेरे खातिर जी रहा है. रिमाइंडर फॉर एवरीवन वर्किंग हार्ड राइट नाउ. आपका एफर्ट विजिबल हो या ना हो, आपकी कंसिस्टेंसी आपके फ्यूचर को बिल्ड कर रही है साइलेंटली. सो कीप गोइंग गाइस. लंच ब्रेक भी आ रहा है, सो नो वरीज, थोड़ी ही देर में आप पेट पूजा कर लेना. अभी के लिए वी एंजॉय द वाइब्स साथ में आपके आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

You're listening to Radio Masti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, it's 11:28. चलो जल्दी से आपके एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं. आपने पानी पिया? अगर नहीं पिया है जल पी लीजिए यार. Sometimes you're not tired, आप बस dehydrated होते हो. दूसरा टिप है चेयर से उठ के 2 मिनट वॉक कर लो. वैसे कहा जाता है कि चलने फिरने से मूड बेहतर हो जाता है.

0: सकता है तो आप वो करें। तीसरा टिप है आपके प्यारी प्यारी आंखों के लिए, आईज को स्क्रीन ब्रेक दे दो यार, बेचारे कब से थक चुके हैं स्क्रीन को ताक ताक के। तो टाइम टू टाइम डू ब्लिंक योर आईज टू द लेफ्ट टू द राइट, ऊपर नीचे और बस हो गया। एंड ऐसे ही लेट्स अडॉप्ट गुड हैबिट्स और म्यूजिक के वॉल्यूम को फिर से बढ़ा लेते हैं आपके आरएम2 रेडियो मस्ती पर इस निलमनी, तो यही पर स्टे ट्यून्ड। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Musty Morning Show. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आपका साथ हो तो और क्या चाहिए। अभी के लिए मैसेजेस पढ़ लेते हैं फिर से। आप है जना जी बोल रही है फ्लैग से, प्लीज अगला गाना। मेरी बेटी रीमा, जनिता, शेषथान, शिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सुसरण फैमिली, फ्लैग से लव यू, यू आर द बेस्ट। नेक्स्ट मैसेज आया है ललिता जीतन जी की तरफ से। हेलो, कैसे हो आप? बहुत बड़े दिनों बाद मैसेज आया आपका। आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन सलाहे पर फैमिली के साथ, आज आप काम नहीं कर रही है तो एंजॉय करना खूब। और नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं श्याम और कुमार दाविचंद जी के लिए, जो कि पगबे के रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी हैव अलीना बाय श्याम जी, दोस्तों के नाम से कनेक्टेड है। आपको कहेंगे हेलो एंड वो को गाज। अगर अभी आप कहाँ पर है या फिर घर के कामों में बिजी हैं तो ऐसे ही स्टे कनेक्टेड अपने आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ। एंड लेट्स डाइव राइट बैक विद अ गुड म्यूजिक।
1: आरएम2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स। रेडियो

gup gup gup gup gup gup gup gup gup gup gup gup gup gup ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ ओए आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए खुस खुस खुस खुस खुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़।

0: You're listening to Masti Mornings.
1: Masti Morning Show.
0: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
2: Welcome to RM2.
0: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, it's 11:53 time हो चला है for me to go and for Ginnishah to say hi.
3: बिल्कुल हम आ गए हैं इन द स्टूडियो में. जैसे मैं आई, मैं ये मुझे बोलते हैं मैं जा रही हूँ हॉट सीट पे, आप बैठ जाइए, मैं तो बैठूंगी.
2: Exactly.
3: So how are you? How was your weekend?
2: मैं ठीक हूँ. Weekend ठीक रहा. आपका कैसा था?
3: बहुत ही अच्छा है. बस मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, so that's why थोड़ा गला खराब है, but still I'm here in the studio for our lovely listeners.
2: Exactly. तो आप लोग यही opportunity है क्या, क्योंकि गिनीशा लेकर आ रही है आपके लिए golden hits.
3: बिल्कुल, the retro rhythm यानी कि खींच के लेके जाएंगे here back to memories, उन गलियों में जहाँ पे आपने अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादों को सजा के रखा है. And one more thing, just to remind you, the new oldies is 90s as well. So agar aapko koi bhi aisa gana suna hai jo 90s ke zamane ke hain, so why not, you can send me your dedications as from now 549912.

0: West
1: 96.4
0: Center
1: 99.4
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti,
2: feel the Musti.
3: चक्योता में एग्जैक्टली नो ना ये सुनते समाचार गीता के साथ नमस्कार।
4: नमस्कार गिनीशा, सभी को हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम नैरोबी पहुंचे। वे अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में भाग लेने के लिए एक सार्वजनिक निजी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का सह आयोजन केन्या और फ्रांस द्वारा किया जा रहा है। अपने आगमन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री आडेन डुआले ने स्वागत किया। नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई धरती पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का फैसला लिया। लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों हस्तियों ने अपने उत्कृष्ट संबंधों की समीक्षा की। ये अवसर मॉरिशस से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का भी रहा, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार शामिल थे। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एमबीसी को साक्षात्कार भी दिया। अंटोनियो गुटेरेस ने सुशासन और लोकतंत्र के क्षेत्र में मॉरिशस को एक शानदार उदाहरण बताया, जबकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मॉरिशस को हमेशा मिलने वाले सहयोग का उल्लेख किया, विशेष रूप से हाल ही में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की के संदर्भ में। रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 साल बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत विवरण व्यवस्था, इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया, जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और विदेश खबरों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड सिचेमिल थ्रियोली में 88 साल की 88-year-old की श्रीमती रुक्मीन रामसुहोई, पैदाश नाम राम गुलाम और जो सुभावती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर बामौशों तेरूश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। 58 साल की किसनावती मोइकू, पैदाश नाम गोकुल और जो रानी से ज़्यादा जानी जाती थी और जो एवेन्यू बेलिल बॉम्बू रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल ओदन डेमोरा रॉयल रोड पेचित रिविया से उठाकर गांधी पालमा काथोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना किशोर दा की आवाज में सच ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशली आप लोगों के लिए टेकन फ्रॉम दिस लवली मूवी जिसका नाम था अंदाज। जी हाँ, एंड जो रिलीज हुई थी 1971 में। पुराने गानों के तराने लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। दोस्तों, आप सबका दिल से हम स्वागत करना चाहते हैं रेट्रो रिदम में। बिल्कुल रेट्रो रिदम की इस सुहानी महफिल में जहां हर गाना लेकर आती हूं, बस लेकर आते हैं यादों की एक नई लहर। वो जमाना ही कुछ और था जब मोहब्बत लफ्जों से नहीं

गानों से बयां होती थी। जब एक मेलोडी सीधा दिल को छू जाती थी। कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने नहीं होते हैं मेरी जान, वो तो बस और भी ज्यादा हसीन हो जाते हैं। तो बस तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल सफर के लिए, जहां मिलेंगे किशोर दा की मस्ती भरी आवाज, लता जी की मिठास और रफीक साहब का जादू, सब कुछ रेट्रो रिदम में। बिल्कुल, हम है गिनिशा जो अगले दो घंटे तक हम साथ मिलकर जियेंगे ओल्ड बॉलीवुड के वो लम्हे जो कभी पुराने नहीं पड़ते। यही है आपका रेट्रो रिदम। 5499-1294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस।

0: रेट्रो रिदम।
1: आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने जो हम स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑन आवर इंटर रेडियो अमस्ते। आई डोंट नो आपके यहाँ पे मौसम का क्या हाल है। अगर हल्की सी बारिश हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि बारिश की हल्की हल्की बूंदे और मिट्टी की जो खुशबू की कम्बिनेशन जो होते हैं ना, और बैकग्राउंड में बजता है एक पुराना बॉलीवुड गाना आवर इंटर रेडियो मस्ती पर, बस इसी एहसास का नाम है रेट्रो रिदम। जी हाँ दोस्तों, भीगी हवाओं में कुछ पुरानी बात होती है और हर पुरानी धुन में छुपी एक याद होती है। तो दोस्तों आज के इस म्यूजिकल बारिश में हम लेकर आए हैं वो एवरग्रीन मेलोडीज। एवरग्रीन मेलोडीज जो हर मौसम को और भी हसीन बना देती है, चाहे वो राज कपूर का अंदाज हो या शम्मी कपूर की एनर्जी या राजेश खन्ना की प्यारी सी मुस्कुराहट या हमारे प्यारे आमिर खान की क्यूटनेस। जी हाँ, हर गाना अपने साथ कह देते हैं एक कहानी लेकर ही आते हैं। तो अपने दिल के रेडियो को ट्यून कर लीजिए और हमारे साथ चलिए एक खूबसूरत रेट्रो सफर पर। और इस रेट्रो सफर पर चेक करते हैं आपके डेडिकेशंस। तो अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे जाना के लिए, जो फ्लैग से हमारा साथ दे रही हैं, और स्पेशली बेटी रीमा के लिए, जिनीता शेषतांशिनी सिल्विया और यूवी कृषि शिव सरन परिवार के लिए जो साथ दे रहे हैं। एंड स्पेशली वी डू हैव ब्रिंडा जी, आज मन बहुत उदास है, ऐसा गाना चला दो कि मन खुश हो जाए। सारे गाने आपके नाम मेरी जान, बस अपने मन को हल्का कर लीजिए, बैठ जाइए, अच्छी सी सांस लीजिए एंड एंजॉय द सॉन्ग्स, एंजॉय ईच एंड एवरी सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं इन योर रेट्रो रिदम। तो चलिए जी 5499-1294 पर Keep on sending me your dedications and to all those who are having their lunch right now. Khana kha rahe ho, lunch kha rahe ho, to bon appetit to you, my dear. From the entire RM2 Radio Masti team ki taraf se aur Ganesha ki taraf se dhir sara pyar.
0: RM2 Radio Masti.

That was such a beautiful track. Lata Mangeshkar and Udit Narayan ki aawazon mein tu mere samne, main tere samne, hai meri jaan. Such a beautiful one hai na. Yehi tha from the movie Dar. Such a beautiful movie. Ji haan, agar mauka mile to dobara dekh lena to bring back some lovely souvenirs. To chaliye ji, I've got you the best lovely bahut hi khoobsurat gaanon ka selections. Waise dekha jaye to ye jo gaane hai na, waqai mein dil ko chu jaate hai. Safar chota ho ya lamha, सफ़र अगर छोटा हो या लंबा, अगर साथ हो ओल्ड बॉलीवुड गाने तो हर रास्ता हसीन बन जाता है. और जैसे रेट्रो रिदम में हम चुन चुन कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ये खूबसूरत गाने तराने के. हो सकता है कि उन गानों में ये से एक ऐसा गाना है जो आपका फेवरेट हो. वैसे ये गाड़ी की रफ्तार हो या दिल की धड़कने, पुराने गाने हर सफ़र को बना देते हैं हमेशा यादगार. तो मैं तो बस इतना कहूँगी, अगर आप फिलहाल कहीं पे हो, गाड़ी में हो, सफ़र में हो, कहीं पे जा रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो, तो सीट बेल्ट को बांध लीजिए और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब बजने वाला है वो सुपरहिट रेट्रो सॉन्ग्स जो हर जनरेशन को फेवरेट बना ही देते हैं. आज हम लेकर आए हैं मेलोडी, रोमांस और नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए. तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ रेट्रो रिदम पर, जहाँ पे गिनेश का साथ दे रहे हैं. और चलिए जी, अगला गाना आकाश चेतन मानसुख के लिए जो बॉम्बे के रहने वाले हैं. विशिंग एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून, स्पेशली आपके मनसुख परिवार के लिए जो बॉम्बे से हमारा साथ दे रहे हैं. और एज यूजुअल आपने कुछ लिख के भेजा है तो ज़रूर अर्ज करना चाहेंगे. वक्त ने करवट ली तो फासले बरने लगे, वक्त ने करवट ली तो फासले बरने लगे और कुछ नए चेहरे दरमियाँ आने लगे. मैं तो शहर गया था तो एक दोस्ती और बन गई और उसकी आंखों में सवाल जलने लगे. मोहब्बत में हक भी था और शक भी, यहीं से शायद हमारे दरमियाँ दरारे भरने लगे. ओके That's so sweet. A very good afternoon, Mauritius. Hello, comment ça va? Bilkul theek hai hum. That's Mr. Day from the city of love, the city of romance, from Paris. A gana ho jaye Kishore Da ki awaaz mein aur Amrita ke liye, zaroor. Thank you so much and have a lovely time, my dear. ऐसे सुंदर सुंदर गानों को सुनकर आप अपने पास्ट में चले जाते हैं. हम मन करता है कि सब कुछ छोड़कर अपने खेफिया के बाहों में ये लेते रहूं. अरे मेरी जान, हाउ रोमांटिक. मौसम भी अपने फेवर में है आज. बिल्कुल ऐसे बरसाती मौसम में ये प्यार और भी जवां होता है. सो द नेक्स्ट वन फिया के लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम मनोज ऑफ पोर्ट लुइस. थैंक यू सो मच माय डियर. सो द नेक्स्ट वन आपके लिए और आपके प्यार के नाम. हे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं बाबू से धनेश्वर और उनकी पत्नी सुनीता, हंसवी देव, रेखा, संजीवनी, शारानी, मीना, वी हैव ऋषि एंड देवडोस परिवार, सनिचर परिवार एंड कावले family. Thank you so much. और आप enjoy कर रहे हैं खूबसूरत गानों को, हमें दिल से अच्छा लग रहा है. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए तैयार हो जाइए. ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम. बाकी लोगों को तो पता ना, 5499 5499 1294 पर keep on sending me your dedications. 5499 1294.

0: Débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: Retro Rhythm.
2: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 12:50 हो चुके हैं। टू ऑल दोस जो हमें ये सुन रहे हैं ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड लवली शो, एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम, जहाँ पे ये किनेशा बड़ी शिद्दत से बड़े प्यार से आपका साथ दे रही हैं विद दिस ब्यूटीफुल मेसमराइजिंग गाने। तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं। सो अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के नाम जो काम पे है। आपने अपना नाम नहीं लिखा, यू डिडंट साइन योर मैसेज हनी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, जो कोई भी हो यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि आपका मैसेज था। तो चलिए, ये अगला गाना सिलेक्शन टॉप है और जब कोई बात बिगड़ जाए प्लीज़ प्लीज़ क्यों बोलते हो, ये गाना प्लीज़ बजा दीजिए। कोशिश करेंगे टू प्ले दैट हस्बैंड विकी के लिए एंड सरजू एंड संदिवेश, और आपका मैसेज अधूरा रह गया सो एंटायर फैमिली के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी 14th बर्थडे टू प्रिंसेस Sansvika Nursia of Palermo, Italy. So congratulations and happy birthday to you, my sweetheart, and best wishes. Coming from Darren, Shweta, Ravish, Prusha, Lavisha, up at the families from Roche Noir. To Chelye G, ye agla gana Jyoti G ke liye jo Chateau Benares se hamesha RMT Radio Masti se jure hue hai, aur Ashini ke liye Rekha, Surekha, and Madhub Parivar ke liye. Thank you so, so much. And Chelye, we do have the next one. Hamare Yale Shan ke liye jo Suriname से साथ दे रहे हैं। सो सुरीनाम से आई गेस लॉट ऑफ पीपल माइट बी लिसनिंग टू मी राइट नाउ, तो ये अगला गाना आपके नाम, अ बिग शाउट आउट टू यू गाइस। हे मीरा क्विजिन टीम इन South of France, thank you so much, lovely गानों के लिए, we are enjoying at work and we are very busy काम के साथ, opening our film festival in Cannes tomorrow, but we enjoy with lovely गाने, thank you so much Meera Uttam, so thank you, आप सात समुंदर पार से हमारा साथ दे रहे हो, and to everyone from France जो साथ दे रहे हैं, ये अगला गाना आपके नाम, hey Prakash Shruti from Belgium, क्या बात है, लगता है कि आज जितने भी हमारे हैं बहुत ही diaspora listeners हैं, सभी के सभी जुड़े हुए हैं हमसे। So here we go, Prakash Shruti ji from Belgium, the next one goes out to you, 5499 12 94, send me your dedications to let me know कहाँ से आप साथ दे रही हो, मौसम का क्या हाल है, and how are you feeling on this beautiful Monday 11th of May 2026. It's me Ginisha that you're listening right now on your number one radio station
1: RM2 Radio Masti.

0: समा।
1: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 PM।
2: वेलकम टू RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
2: RM2
4: रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
1: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
5: नमस्कार गिनिशा, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। ये कैसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल माक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के दौरान की थी। 2 वर्ष बाद अब 30 से अधिक अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख आज से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी इसमें भाग ले रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न राउंड टेबल बैठकों में हिस्सा लेंगे। और नैरोबी के जम्मू केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई जमीन पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का निर्णय लिया। लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों महानुभावों ने अपने संबंधों की, मतलब दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा की। शिखर सम्मेलन से पहले स्टैटमोर यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज ने विचार विमर्श और बहस के पहले चरण की शुरुआत कि इसके केंद्र में एक मुख्य विचार था, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श किस प्रकार निर्मित हो रहा है, इस पर सवाल उठाना। ये पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन द्वारा आयोजित की गई सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पैवियों में लगभग 50 संगठनों से जुड़े शोधकर्ताओं, कलाकारों और परियोजना संचालकों को एक साथ लाता है, ताकि वे अपने अनुभवों और प्रस्तावों का आदान प्रदान कर सकें। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम आर्यन नावामारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। जेंडर इक्वालिटी मंत्री से पहले भी कई महिलाओं ने हमारे संस्थानों के द्वार खोले थे। मारी डेनिस मार्शन को 1963 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनाया गया था और राधा पुनुस्वामी 1975 में पहली महिला बनी जो सांसद के रूप में निर्वाचित हुई और इसके तुरंत बाद मंत्री पद संभाला।

0: आपको बता दें कि 2014 में माया हनुमान जी राज्यसभा की पहली महिला स्पीकर बनी और 2015 में अमीना गरीब फाकी मॉरिशस की पहली महिला राष्ट्रपति। विदेश में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंडियस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक उन 90 से अधिक पर्यटकों में शामिल हैं जिन्हें रविवार को डच जहाज से घर वापस लाया गया। ये जहाज सुबह होने से पहले कैनरी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुए थे। तो ये थी अब तक की खबरें कुछ ही समय में। शोक समाचार। रॉय रोड पिछित रिविया में 58 साल की 58 years old श्रीमती किसनावती मोइकू पैदाशी नाम गोकुल और जिन्हें लोग रानी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले एवेन्यू बेलिल बॉम्बू की रहने वाली थी। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे लशापेल ऑडेंट दे मोरा रॉय रोड पिछित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा काटोबोन कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 1:30 PM। रॉय रोड से चमिल त्रियोली में 88 साल की 88 years old श्रीमती रुकमीन राम सोहोई या पैदाशी नाम राम गुलाम और जिन्हें लोग सुभावती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉय रोड से चमिल त्रियोली से उठाकर बुआ मौशत अगूश कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musti. Radio.

0: रेट्रो रिदम।
1: आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मिटवा। ओ माय डियर, सच अ लवली सॉन्ग। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कभी कभी दिल करता है ना कि वक्त वहीं पे रुक जाए जहाँ रेडियो पर एक प्यारा सा गाना बज रहा हो और हम बस उस लम्हे में खो जाएं। दोस्तों तो इसी एहसास को जिंदा रखने के लिए हम रेट्रो रिदम में ऐसे ऐसे खूबसूरत नगमे लेकर आते हैं। ना टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी भीड़ थी, फिर भी उन गानों में दिल के सबसे करीब थी। वो गाने जो होते हैं ना, हमारे दिल के सबसे करीब हुआ करते थे। आज फिर सज रही है सुरों की महफिल, जहां हर गीत एक याद बनकर लौट कर आ रहा है आपके पास। तो चलिए दोस्तों, मिलकर जीते हैं वो गोल्डन एरा सिर्फ रेडियो रिदम के साथ। और गणेशा साथ दे रही हैं, और फिलहाल के लिए आई वुड लव टू से वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। 12 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्त जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, विशिंग यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। सो माय डियर लवली लिसनर्स, आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग एंड फीलिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग जो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के। So stay tuned and stay connected. Retro Rhythm every afternoon 12 baje se lekar 2 baje tak on your number one radio station.
0: You're listening to Radio Masti.

0: हम खुद को ही भूल जाते हैं, इसीलिए हम लेकर आते हैं एक ऐसी महफिल जहां सुकून भी मिलते हैं आपके दिल को, यादें भी और पॉजिटिविटी भी आपको मिलते हैं इन खूबसूरत गानों के जरिए। वैसे देखा जाए जो बीत गया उसे याद रखो, हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो बीत गया है ना उसे याद रखो, पर जो आने वाला है उसे प्यार करो। पास की अच्छी यादें हमें स्माइल दिलाती हैं हमारे खूबसूरत सी होंठों पर, और फ्यूचर की उम्मीदें हमें जीने की वजह देती हैं। तो हर दिन के लिए ग्रेटफुल हमेशा रहिए और हमेशा हंसते रहिए और लाइफ के हर मोमेंट को म्यूजिक की तरह एंजॉय कीजिए। बस स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। तो चलिए आपकी इस खूबसूरत ऐसी सफर में जो गिनीश आपका साथ दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं दाबा आपको दिल से अच्छा लग रहा है और आपका दिल हल्का और चेहरे पर मुस्कुराहट से भर हम रहे हैं इन खूबसूरत गीतों के जरिए। 5499124 पर वैसे हम हमें मिले हैं बहुत सारी आपके दिल की बातें, आपके डेडिकेशंस। तो अगला गाना सभी फ्रेंड के लिए जो आपका साथ दे रहे हैं, वी डू हैव कल्याणी जी, शी इज फ्रॉम काउंटोगल, सो थैंक यू सो मच कल्याणी, लवली गान इज बीइंग प्लेड, यानी जवानी की याद आ गई मुझे, अभी तो आप जवान हो मेरी जान है माँ, ऐसी बातें मत किया कीजिए, यू सो प्रीटी सो ब्यूटिफुल। सो अगला गाना जो है कोई भी दिल में ना आया था, कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर यू। ओके तो चलिए द नेक्स्ट वन गोज आउट to you and we do have ye agla gana especially Anita कैसुन दयाल के लिए जो बन मैया की रहने वाली हैं, आपकी लवली डॉटर आशा के लिए, आपके दामाद के लिए जिनका नाम है दीपक भोला और पिछे गफरे, दे आर सेलिब्रेटिंग आई गेस देयर वेडिंग एनिवर्सरी, आपका मैसेज अधूरा रह गया, इफ़ यू कैन यू कैन, अगर हो सके तो आप मुझे भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ऑन 5499124 पर। फिलहाल के लिए टू ऑल दोज वो वर्किंग हेलो जी को खाश टू यू 5499124, जी हाँ इट इज अ मैजिकल नंबर एक्चुअली, प्लीज सेंड मी योर डेडिकेशंस, बताइए जरा किसके लिए गाना डेडिकेट करना पसंद करोगे आप।
1: R2 रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: वेलकम टू टाइम स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं। टाइम बेटा चला जा रहा है और एक गाने के बाद खूबसूरत ही खूबसूरत गाने तराने हम पेश कर रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। और चलिए जी, फिलहाल के लिए हम बस उन सभी लिसनर्स का थैंक यू बोलना चाहेंगे जो हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं, हमारे इन खूबसूरत गीतों को सुनते रहते हैं। सो वक्त आ गया है एक बार फिर सुरों के इस खूबसूरत दौर में लौटने का, जहाँ सिंप्लिसिटी थी, इमोशंस थे और दिल को छू लेने वाला गीत थे। आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम विद मी ऑन ऑरेंटू रेडियो मस्ती। वैसे हम तो हमेशा कहते हैं कि खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस दिल साफ और सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। दुनिया में निगेटिविटी बहुत है मेरी जान, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है म्यूज़िक के साथ ला सकते हो। दूसरों की मदद करिए, दिल से माफ़ करिए और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिए। और फिलहाल के लिए खूबसूरत उन्हें खूबसूरत इमोशन को म्यूजिक में महसूस करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, क्योंकि गाने तो हम जितने भी लेकर आए सभी लोग तो मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, दिस वन इज़ गुड। वैसे ओल्ड बॉलीवुड के एवरग्रीन क्लासिक के साथ हमेशा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे इन खूबसूरत इस खूबसूरत शो को, रेट्रो रिदम को। और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, किसी ने लिखा है सुपर से भी ऊपर गाने। हे थैंक यू सो मच, दैट्स फ्रॉम Day from the City of Love and we do have ये अगला गाना जो है किसी ने और लिखा है, बहुत ही खूबसूरत गानों का सिलेक्शन है। अगला गीत सभी सुनने वालों के नाम आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ जोड़े रहे हैं, मोनिका के लिए पूनम, उमेश, राजन, उमेश और शी, एंड दैट्स आल्सो टू यू जान्क्लोड संगर फ्रॉम फ्रांस। हे वी हैव ये अगला गाना स्पेशली टू ऑल दोज जो साथ दे रहे हैं, जैसे कि फ्रॉम गाना वी हैव पूनम तिनी मोहन। होते हैं मजा आ रहा है इन खूबसूरत बहुत ही पुराने गानों को सुनने के बाद, ऐसा लग रहा है ना कि वक्त में लौट चलते हैं और प्यारे से मुस्कुराहट भी लेकर आते हैं ये गाने सुनने के बाद। थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए। 5499294 की पंसानिंग में योर डेडिकेशन।

0: Débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: RM2, Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.
4: तो चले जी 1:54 हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू जी। हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दी जाने वाली है थोड़ी देर में, पर ये आपका साथ देने के लिए इन सच अ लवली शो जहाँ पे खूबसूरत नए बॉलीवुड के गाने होंगे एंड सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड दैट्स गोना बी योर बॉम्बे टॉकीज। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे, यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कल फिर सेम शो सेम रेडियो चैनल पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बाय।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रविवार रात मॉरिशस समय अनुसार रात के 11 बजे केन्या के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन ज्वाली ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी और

0: फैब्रिस डेविड विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदुयार फ्रांस में, मॉरिशस के राजदूत जोएल रॉयल तथा अफ्रीकी संघ में हमारे स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहे। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों की पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि केन्या उनका पहला विदेशी देश था जहां उन्होंने जीवन में पहली बार यात्रा की थी, जब वे सर शिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याता से मिलने गए हुए थे। इसके बाद जोमो केन्याता ने मॉरिशस को संविधान तैयार करने में मदद करने के लिए प्रतिभाशाली ब्योरा को भेजा है। अब प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी मौजूद हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक आज से केन्या की राजधानी में शुरू हो रही है। मॉरिशस लोकतंत्र और अच्छे शासन का शानदार उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नैरोबी में कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद एमबीसी को विशेष रूप से ये बयान दिया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर बात की। अपनी ओर से मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रति संयुक्त राष्ट्र के निरंतर समर्थन की सराहना की। और विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IMF ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजनाओं का समन्वय करेगा। विदेश में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी। इस बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies,
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: बॉम्बे टॉकीज
1: रेडियो मस्ती
2: रेडियो मस्ती
3: सो वेल फ्रेंड्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए मंडे आफ्टरनून 11th ऑफ मे 2:14 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम अभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाए. लेटेस्ट सॉन्ग्स कर रहे हैं आपका इंतजार. आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो आफ्टर रेट्रो हिट्स इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट हिट्स. सो बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हमेशा आपके लिए हम लेकर आते हैं, परोसते हैं आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. सो साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM. आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
4: You're listening to Radio Mastee.

सो चलिए दोस्तों, इट्स 2:23 और आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती। सो अब हम बात करने वाली हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, जो सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि निजी जिंदगी में परिवार के लिए, प्यार के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने माता पिता के साथ अपने पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और मदर्स डे के मौके पर उन्होंने अपनी दोनों माँ पर प्यार लुटाया है और प्यारी तस्वीरें शेयर की है सोशल मीडिया पर। उन्होंने खास तस्वीरें शेयर की है, जिसमें पहली तस्वीर उनके बचपन की है, जिसमें वो अपनी माँ की गोद में बैठे और प्यार से कैमरा की तरफ देखते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो सोफा पर अपनी मामा सलमा खान के साथ बैठे हैं और उनके सर पर हाथ रखा हुआ है, और तीसरी फोटो में वो अपनी दोनों माओं के साथ यानी कि सलमा खान एंड हेलन के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर में अपनी मां के प्रति सलमान खान का प्यार साफ देखा जा सकता है, और साथ ही साथ इस पोस्ट पर उन्होंने दोनों को हैप्पी मदर्स डे विश किया है। सुबह लवे के लिए जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स, आपके फेवरेट सेलेब्स की कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं और लेकर आते हैं कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स। साथ दे रहे हैं आप भी, तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499124 पर साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Bombay Talkies Radio Musti
1: Radio Musti
2: बोलो बोलो, हम तो बोलने ही आए हैं और कभी कभार तो हमें बोलना पड़ता है कि अब काम बोलो, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही है बोलना और इन खबरों को आप तक पहुंचाना। चलिए दोस्तों, मिक्स ऑफ सॉन्ग्स आपके लिए एंड कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर बी टाउन की खबरें हम आपसे शेयर करते हैं। सो बॉलीवुड के पसंदीदा कपल कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनकी शादी 2023 के फरवरी महीने में हुई थी। इसके बाद जुलाई 2025 में दोनों ने अपनी बेटी सराया का वेलकम किया। मां बनने के बाद कियारा अपनी मदर लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और अब धीरे धीरे फिर से काम पर लौट रही है। एक्ट्रेस जल्द ही यश के साथ फिल्म टॉक्सिक में नजर आने वाली है और हाल ही में एक इंटरव्यू में कियारा ने अपने पोस्टमार्टम जर्नी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनके कई इमोशनल बदलाव महसूस किए और उस मुश्किल दौर में उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका पूरा साथ दिया। कियारा आडवाणी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी बेटी के जन्म के बाद की जिंदगी को लेकर बात करते हुए काफ़ी इमोशनल बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बदल गई। कियारा ने मदरहुड को एक ऐसा अनुभव बताया जिसमें उनकी सोच, इमोशंस और पहचान तक बदल दी। पोस्टमार्टम दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसे होती है। कियारा आडवाणी ने बताया कि मां बनने के करीब 6 महीने यानी कि 6 मंथ्स बाद उन्होंने पहली बार खुद के इमोशंस और उनकी मेंटल कंडीशन पर ध्यान देना शुरू किया। एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को पहले रखती आई है, लेकिन मदरहुड ने उन्हें खुद से दोबारा जुड़ने का मौका दिया और अभी के लिए तो वो अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन इन बातों को शेयर करते हुए हो गई ये प्यारी सी एक्ट्रेस थोड़ी सी इमोशनल, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा होता है। एंड ये भी हमने देखा कि कहां उनकी बॉलीवुड में जर्नी शुरू हुई थी, कहां उनका डेब्यू हुआ था, कहां उनकी शादी हुई और उसके बाद अब वो ममा भी बन गई है। सो दैट्स ऑल्सो नाइस, क्योंकि हम भी जैसे उनके फैंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। सभी के लिए तो ये खबरें आप तक पहुंचा रही हैं दोस्तों, और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो नॉट टू फॉरगेट, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी हम थोड़ी ही देर में लेकर आने वाले हैं। 5499-1294 मैसेजेस डेडिकेशंस पहुंच गए हैं। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं किसी खास के नाम मैसेज भेजना है, कोई क्रश है या फिर बस खुद को फील गुड करवाना है, नॉट वरी, मैं हूं यहां आपके साथ, परी का साथ, राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: सपहर के 3 बज चुके हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम रविवार रात मॉरिशस समयानुसार रात 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अदन दुआले ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में जिनो मंत्री धनेश्वर दामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदुयाल, फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल रॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में हमारे सहायक प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों में पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि केन्या उनका पहला विदेशी देश था जहां उन्होंने जीवन में पहली बार यात्रा की थी, जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याता से मिलने गए हुए थे। इसके बाद जोमो केन्याता ने मॉरिशस को संविधान तैयार करने में मदद करने के लिए प्रतिभाशाली टॉम एम्बोया को भेजा था। प्रधानमंत्री अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों भी मौजूद हैं। और मॉरिशस लोकतंत्र और अच्छे शासन का शानदार उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नैरोबी में कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद एमबीसी को विशेष रूप से ये बयान दिया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर बात की। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के माध्यम और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजनाओं का समन्वय करेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में शोक समाचार। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सिवनोत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। कीर्थी कल दिन के 2 बजे इनके पति धनराज सिवनोत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: चल

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, 3:23 हो रहे हैं, मंडे आ ही गया फाइनली मंडे। और मंडे जब आता है लेकर आता है एक हफ्ते का स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस लेने का नहीं और देने का भी नहीं। हम तो है यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए, यानी कि म्यूजिक आप तक पहुँचाएंगे। और वक्त का क्या है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो वक्त पास हो ही जाएगा। और मंडे है, ट्यूजडे आएगा, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे करते हुए आपका जो वीकेंड है, आपका जो सैटरडे संडे है वो भी आ जाएगा। तो बस ज्यादा डरने की बात नहीं है, एकदम कूल, एकदम रिलैक्स होते हुए आप अपने इस वीक को एंजॉय करें। हम तो कहते हैं कि हफ्ते का पहला दिन है, सो लेट्स कीप इट हैप्पी एंड पॉजिटिव, ताकि पूरा हफ्ता ऐसे ही हैप्पी हैप्पी बीते। अभी के लिए तो अगर वर्क का स्ट्रेस है, फाइलों में आप भी अटके हुए हैं, या फिर कहीं पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, काम पर अटके हुए हैं, हमारी तरह गानों को सुन रहे हैं, तो जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, गुड म्यूजिक आपके लिए, बिकॉज इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। अभी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी हम तक आ रहे हैं। सो डीजे डेविसन, आप है लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं गुड। और आज काम भी एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अभी के लिए डेविसन, अगला गाना होगा आपके नाम, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। मिस्टर सांगा फ्रॉम फ्रांस आ गए हैं आप भी अपने गुड विशेस के साथ, सो गाना होगा आपके नाम, एंड यहाँ पर कहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना फॉर मी, यले शाम ऑफ सुरिनाम, साथ दे रहे हैं आप RM2 टीम का। सो अभी सुरिनाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं आप, अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए। एंड फ्लक्स से बोल रही है जाना जी, मैसेज हम तक पहुंचा रही हैं, सो थैंक यू जी, गाने सुनते हुए अपना काम भी कर रही हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना पूरे परिवार के नाम, रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, युवी, कृषि, शिवसरन परिवार, फ्लक्स से हमारा साथ दे रहे हैं। सो गाना होगा आपके नाम, एंड अभिषेक आप है लाल माती से, कहते हैं प्लीज एक गाना फॉर माई लवली वाइफ विशाखा, एक ब्यूटिफुल गाना उनके नाम, जरूर जी जरूर। साथ ही यहाँ पर अनीता किशनदयाल साथ दे रही हैं बॉनमे से और कहती हैं गाना हो जाए फॉर लवली डॉटर आशा, और दामाद दीपक उनके लिए भेजा है आपने बहुत सारा प्यार एंड गुडी गुड विशेस। तो ऐसे ही आप अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर तो आप जानते हैं, इट्स 5499-1294। मैं हूं परी आपके साथ, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आप तक पहुंचा रही हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट इट्स योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर लेटेस्ट सॉन्ग्स जो हैं वो शामिल होते हैं और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी ऑन 5499-1294। सो हो जाइए गाना टू गेट यू इन द मंडे मूड।

So well, after Flipper Rachi, we have this beautiful romantic gana for everyone who's in love, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Especially Abhishek की ओर से this one goes out for Vishakha and Yalesh, आपके नाम भी. साथ ही यहाँ पर DJ Davison हमारा साथ दे रहे हैं. So this one goes out for you, हमारी प्यारी सी जाना जी, साथ देने के लिए शुक्रिया. प्यारे गानों के लिए हम तो यहाँ पर है क्योंकि गाने आप तक पहुँचा रहे हैं with some latest updates of Bollywood. So that's your Bombay Talkies. Enjoy this one.

0: So well, यहाँ पर गुड न्यूज फॉर ऑल धुरंधर फैंस, ये जो फिल्म है OTT पर रिलीज होने जा रही है दिस फ्राइडे. थैंक यू सो मच मिस्टर मनवीर. यहाँ पर विजया जी भी खबर हम तक पहुंचा रही है, धुरंधर 2 विल बी अवेलेबल ऑन OTT दिस फ्राइडे. यानी कि जिन्होंने फिल्म को नहीं देखा है अब ये देख सकते हैं OTT पर, और जिन्होंने देखा है वो तो आई एम श्योर बार बार लगातार इसे देखने वाले हैं ऑन OTT. इस फिल्म का क्रेज तो अलग ही है और ऐसे ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इस फिल्म ने, एंड फाइनली रिलीज हो रही है ऑन OTT. ये है अ गुड न्यूज फॉर ऑल धुरंधर फैंस.
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: सो चलिए दोस्तों, विद दिस ट्रैक इट्स टाइम फॉर पारी टू से गुड बाय. और मेरे बाद आ रही है मनीष मालेकर और अवतार वाइब्स. इस वक्त गातो बनान आप पका रही हैं फॉर योर लवली किड्स एंड बैक टू स्कूल. और उनके लिए कुछ स्पेशल ये है फ्रॉम दादी सुया बिहारी, कोंगो माँ से साथ दे रही हैं. सो आपके स्वीट फैमिली के नाम एक स्वीट सा गाना. एंड यहाँ पर विजया जी साथ दे रही हैं आप भी. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. मिस्टर मनवीर साथ दे रहे हैं आप भी. सो विशिंग योर वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: Time check. शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ पूजा. नमस्कार आपको.
7: नमस्कार मनीष माँ, सभी को मेरा नमस्कार. वर्तमान में तैयार की जा रही नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी 2026-2030 का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को 50% तक कम करना है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक्शन डिकेड के अनुरूप है. गेजू में आज एक कंसल्टेटिव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने अधिक सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के महत्व पर बात की. इस महीने ही 6000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के छात्रों में सड़क सुरक्षा के सिद्धांतों का प्रचार कर सकें. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम कल रविवार को मौसम समय अनुसार रात 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि मंडल में कई जूनियर मंत्री और

0: महानुभाव शामिल हैं। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों की पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया और अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में प्रधानमंत्री अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद हैं। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश की गई है। इसमें एक क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है। विदेश में अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और फ्रांस के दो नागरिकों में जो एक क्रूज जहाज छोड़कर अपने अपने देश लौटे थे और जिस पर एंटीवायरस का घातक प्रकोप हुआ था, वायरस की पुष्टि हुई है। अमरीकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि रिपैट्रिएशन फ्लाइट में एक अन्य अमेरिकी नागरिक में हल्के लक्षण भी देखे गए और दोनों यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी के तौर पर बायो कंटेनमेंट यूनिट में यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक महिला पेरिस में अलग थलग है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जबकि उसके 22 संपर्क मामलों का पता लगाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: भक्ति मूवी से लिया गया ये गाना। आखियां देखो कोल छुपा राव के पास में कोई भी गाना गाती है तो यार दिल को सीधा छू लेते हैं उनके पास। 4:06 हुए हैं, स्वागत है आपके लिए आप सभी का इन योर रफ्तार वाइब्स विद मी मनीष मा।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती।

0: Avatar vibes. Filmy rides.
1: RM2.
2: Radio Masti.
3: Anjana Anjani ki kahani. Here we go. Taken from the movie Anjana Anjani for you, ladies and gentlemen. Dekhal dosto, hum mone aaj jhakuda rahe. बस आपके लिए, आपके आफ्टरनून को थोड़ा सा बीट डालने के लिए सर. Come on, say. Wonderful afternoon out there, giving you the right vibes here. जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. ये है नंबर 5491294.

0: देखो जी, कहानी जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो जिंदगी में तो लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। जस्ट इमेजिन योर लाइफ एंड कहानी लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस हियर विद योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस। थोड़ी देर में लेकर आएंगे आपके मैसेजेस, लेकिन अभी के लिए आई गॉट हियर द गेम स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट एंड द विनर विल गेट अ गुडी बैग वर्थ 3000 और 3500 रुपीज अराउंड दिस मच। ये गुडी बैग का वर्थ है। अगर आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं, देखो जी, ये इस स्पेशल प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026। दिस कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट रोड डेंजर्स एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू सेव लाइव्स। अभी के लिए सवाल ये रहा इस शाम के लिए, अगर आप हमें बता सकते हैं सवाल का जवाब, हाउ शुड अ पेडेस्ट्रियन ड्रेस एट नाइट एंड वाई। हाउ शुड अ पेडेस्ट्रियन ड्रेस एट नाइट एंड वाई, कारण और सही जवाब दीजिएगा ऑन दिस नंबर 549-1294 पर। प्लीज सेंड अस योर फुल नेम एंड एड्रेस के साथ। ओके, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून। 549-1294 पर आपके जवाबों का इंतजार है इस नंबर पर।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2,
1: रेडियो मस्ती।

0: अरे शोर मच जाएगा वैसे. हेलो हेलो, वेलकम टू दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑफ कोर्स द लैंड एंड ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी वीक, जो शुरू हो चुका है. दिस कैंपेन एज वेल एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट रोड डेंजर्स एंड प्रमोट मोर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू सेव लाइव्स. अभी के लिए थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि यार हाउ शुड अ पेडेस्ट्रियन ड्रेस एट नाइट एंड व्हाई, एंड द राइट आंसर इज वेयर लाइट कलर्ड एंड रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड visible to other road users. ये है सही जवाब. और हमारे साथ है कौन जो जीते हैं ये amazing goodie bag, उनका नाम है अभिषेक. Thank you so much अभिषेक, and thank you for this wonderful message. And आपको मिल रहा है ये goodie bag worth 3000 या 3500, डिपेंडिंग क्या है इस गिरी बैग में. आपके नाम हो चुका है. अगर आपको पिकअप करना है टू आज फ्रॉम द 14th ऑफ मे आइएगा. आज नहीं कल नहीं, 14th ऑफ मे. आज फ्रॉम द 14th ऑफ मे आप आ जाइएगा पिकअप योर गिरी बैग वर्थ 3,500 रुपीज. कंग्रेचुलेशंस, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो

0: Enfants, quand lit online. Zodi, quand lit le sopo table ou l'on se tablette, mot l'esprit tranquille à cause sécurité mots enfants, peine à prix. Un enfant sans protection sur les réseaux peut être exposé à des dangers bien réels. Cyberbullying, des contenus violents, entre autres. Protégez votre enfant aujourd'hui avec Mighty Protect. Pour plus d'infos, appelez le 89 00 ou visitez notre page mighty.mu.
1: Mighty? Mighty, c'est ça!
2: RM2
3: Radio Musti
4: Raftar Vibes Filmy Rides
2: RM2
5: Radio Musti
6: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
5: Sports News, latest updates.
7: Sports News
3: Radio Musti in the mix.
8: 4:33 हुए हैं, ladies and gentlemen, welcome to the sports magazine by Arvind. Of course, good afternoon to you, Arvind जी.
9: Good afternoon आपको, good afternoon listeners. वैसे हमारे listeners अभी कहेंगे 4:33 क्या है? आज अरविंद जल्दी आ गया.
8: हाँ, क्यों? क्यों? इस time पर क्यों? Because there's something special happening.
9: Special अभी थोड़ी देर में. लेट्स सी, अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ होता रहता है चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में, इस पर चर्चा करेंगे. आज प्रीमियर लीग का एक मैच है, वो प्रीमियर लीग का जो मैच स्पर्स और लीड्स यूनाइटेड के बीच, ये मैच स्पर्स के लिए वेरी डिसाइसिव, लीड्स के लिए नहीं, लीड्स दे ऑलरेडी सेफ, लेकिन स्पर्स के लिए हाँ, क्योंकि अगर आज जीत गए तो रिलीगेशन जोन से 4 अंक आगे निकल जाएंगे. अभी स्पर्स हैविंग प्लेड 35 मैचेस, 37 पॉइंट्स. वेस्ट हैम यूनाइटेड, जिसकी कल हार हुई, वी कैन से कंट्रोवर्शियल लॉस, 36 पॉइंट्स हैं उसके पास 36 मैचों के बाद, तो आज 4 अंक आगे निकल सकता है स्पर्स. इसके बाद केवल 2 मैच रह जाएंगे. लीड्स यूनाइटेड अभी 43 पॉइंट पे हैं, सो गोल डिफरेंस उसका ठीक है, सेफ है. जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट भी कल सेफ हो गया अपना मैच ड्रॉ कर, सो ऑल प्रेशर ऑन टोटनहम हॉटस्पर जो आज लीड्स यूनाइटेड के मैदान में होगा. बहुत लोग लीड्स यूनाइटेड का स्वागत करेगा अपने मैदान में, सो प्रेशर स्पर्स पर, हारना मना है इस मैच में. प्रमोशन प्लेऑफ सेमीफाइनल भी मिलवॉल और हल के बीच मैच होगा. फर्स्ट लेग में मैच ड्रॉ गया था 0-0, तो आज अपने मैदान में मिलवॉल हल का हल निकल पाएगा नहीं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा. जो जीतेगा दे विल गो इन द फाइनल. फाइनल जो है प्रमोशन प्लेऑफ फॉर द प्रीमियर लीग, ये वेम्बले में खेला जाएगा. स्पेन के ला लीगा में रायो वालेकानो जिरोना, फिर इटली के सेरी आ में नापोली बोलोनिया, और बाकी चैंपियनशिप में भी मैच हैं, जैसे इंडियन सुपर लीग में ईस्ट बंगाल लीडर ईस्ट बंगाल विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पंजाब. और कल के मैचों पर एक नज़र डालेंगे तो विल बी हैविंग द स्कॉटिश प्रीमियर लीग मैच, फिर चैंपियनशिप प्ले ऑफ साउथैम्पटन और मिडिल्सब्रो के बीच, ये कल के मैच हैं. और वीकेंड से पहले बुधवार को मैनचेस्टर सिटी अपना लेट मैच खेलेगा अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. मैनचेस्टर सिटी जो अभी आर्सेनल से 5 अंक पीछे हैं, कर्टेसी कल आर्सेनल की कंट्रोवर्शियल जीत के साथ. इधर इसको बिगेस्ट वाकॉल एवर कहा जा रहा है, 4 काउटिक मिनट्स, जो इस सीजन को डिफाइन कर सकता है. कैसे? क्योंकि इसमें जीत हुई आर्सेनल की, देव गॉट 3 प्रीशियस पॉइंट्स, और वेस्ट हैम यूनाइटेड एक कीमती अंक हार गया जो उनके रिलीगेशन बैटल के लिए बहुत इम्पोर्टेड हो सकता था. वेस्ट हैम यूनाइटेड ने कहा कि ये लोग रेफरीज बॉडी को, रेफरीज एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट करेंगे ओवर द डिसअलाउड गोल. ये एक ऐसा गोल है जो एक टीम को रिलेगेट कर सकती है. सो इतना कुछ फुटबॉल के बारे में. क्रिकेट के बारे में आज मैच है पंजाब किंग्स. पंजाब किंग्स की टीम आज खेलेगी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. 6 बजे ये मैच शुरू होगा. पंजाब किंग्स जो एक समय पहले पोजीशन पे था, अभी नीचे जाने लगा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसने कल मुंबई इंडियंस को हराया, दे आर लीडिंग द टेबल 14 पॉइंट्स. सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 14 पॉइंट्स, गुजरात टाइटन्स के पास भी 14. पंजाब किंग्स ने एक मैच कम खेला है, 13 पॉइंट्स, तो अगर आज अपना मैच जीतता है तो दे कैन क्लाइंब टू द टॉप पोजिशन. फिर आता है पाँचवीं पोजिशन पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स गोइंग डाउन, उनके पास है 12 पॉइंट्स आफ्टर 6 मैचेस प्लेड. एंड द स्टार स्टडेड टीम मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट्स, 9th पोजिशन. 10th पोजिशन पे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी 6.7 सौ

0: it's happening for the Indian Super Indian Premier League 2026. So that's it for cricket. And yes, we were talking about something special. Let's go for that.
1: Special, here we go.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको
1: जैसे कि आप जानते हैं ये तो स्पेशल ही है, स्पेशल है वर्ल्ड कप. बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं उनको फॉलो करेंगे यहाँ पर हर रोज लेकर आएंगे गर्मा गर्म खबर.
0: यस, रोड टू वर्ल्ड कप 2026, जैसे विकास ने बताया, इट्स द बिगेस्ट वन क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टीमें भाग लेंगी. सो आज एग्जैक्टली आज से एग्जैक्टली एक महीने बाद यानी 11 जून को द ग्रैंड फुटबॉल फिएस्टा विल स्टार्ट इन मेक्सिको. तो रोड टू 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल स्टेज में ये फॉर द फर्स्ट टाइम 48 टीम्स विल कम्पीट. इसमें 16 होस्ट सिटीज होंगे कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ग्रुप स्टेज ड्रॉ निकाले गए दिसंबर महीने में वाशिंगटन में. 12 ग्रुप बने हैं. ओपनिंग मैच ये होगा 11 जून 2026 एट द स्टाडियो अस्तेका इन मेक्सिको सिटी. और उसी दिन मैच होगा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच. द फाइनल मैच विल बी प्लेड ऑन 19 जुलाई 2026 एट MetLife Stadium, New Jersey में. तो फॉर्मेट ऐसा है कि टॉप टू टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप प्लस द बेस्ट 8 थर्ड प्लेस टीम्स ये लोग न्यू राउंड ऑफ 32 नॉकआउट में पहुंचेंगे. सो 48 टीम्स, कौन कौन सी वो टीमें हैं, कौन घायल हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, इन सब पर आपको इस सेगमेंट पर हम लोग जानकारियां देते रहेंगे. दिस सेगमेंट वी स्टार्टिंग टूडे रेडियो मस्ती पर रोड टू द World Cup.
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अरविंद जी. वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टनिंग गोल्स, इमोशनल विक्ट्रीज एंड अनफॉरगेटेबल फुटबॉल नाइट. सो अपनी फेवरेट रेडियो स्टेशन ये है आरएम2 रेडियो मस्ती पर फॉलो कीजिएगा.
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई. कैच ऑल द न्यूज़, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स रेडियो.

0: बेफिक्र होकर जी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कहने के लिए हर कोई किसी के पास होता है कुछ कहने के लिए, लेकिन आप अपने आप से क्या कहते हो, हर रोज क्या कहते हो? Are you satisfied with your work? Are you satisfied with whatever you're doing right now? वैसे अगर जो भी करना है तो अगर दिल में आप दिल के साथ, इमोशन के साथ, रैशनल होकर भी, इमोशनल के साथ भी आप अगर कोई निर्णय भी लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, लेकिन हाँ, do it with full mindfulness. Okay, have a wonderful afternoon. Welcome, good afternoon. 5:09 हुए, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती की साइड से और अफ्तार वाइब्स. लेते हैं अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक विद ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक. लत लग गई, हियर वी गो.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: Mieux connaître la taxe avec la MRE.
3: Bonjour, la MRE rappelle tout bon VAT registered person qui, d'après section 9 du VAT Act, the business charge TVA le tout bon produit et service qui taxable. Nous redire, tout du monde qui est enregistré comme VAT registered, the business charge VAT d'après taux qui est applicable le tout service et produit taxable dans Maurice. À moins qu'il produit ce service-là, il est exempté des taxes ou bien les zéro retail d'après la loi. The business charge VAT au moment où je peux vendre ce produit ou au moment où je peux donner ce service-là. Sa VAT qui est collectée là, je peux bien remettre ça à la MRE. Pour plus de renseignements, téléphone-nous au 207-6000 ou visite notre site web le www.mre.me. Merci et à bientôt.
1: Pour tout achat que tu payes TVA, pas oublié, exige ou reçu.
2: RM2 Radio Mustang.

0: वैसे आपको जो करना है खुले दिल के साथ पूरे दिल के साथ कीजिएगा. वैसे हाव फन, अब निर्णय लेना चाहते हैं फॉर डूइंग सम एक्सरसाइजेस आल्सो. प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, बिकॉज सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हम करते हैं रोज.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती.
0: Got here the best of song selections आपके लिए. 5:20 हुए हैं. Have a wonderful afternoon. काम कर रहे हो तो बोंको हार्श, ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव सेफ.

0: साखी फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, नेहा कक्कर बी प्राग एंड तुलसी कुमार ने बहाते इस गाने को। होप यू हैव ए वंडरफुल टाइम आउट देयर। हेलो बहना, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। कुमार देवी चंजी एंजॉयिंग योर प्रोग्राम राइट नाउ। हॉट हॉट टी के साथ इलायची वाली चाय, क्या बात है। फुल वॉल्यूम के साथ लवली डैड श्याम देवी चंद। हेलो नमस्ते दीदी, हाउ आर यू? दिस वन इज आउट माय बिलवड अर्शद। आई प्रॉमिस यू नो वन विल एवर टेक योर प्लेस इन माय हार्ट, इट्स योर्स। आई ट्रूली लव यू फ्रॉम बीबी रेबेका। हेलो लवली सिस्टर ललिता जीतन, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम with hot coffee right now. Next song goes out to my colleague teachers Dishita, Anshi, Tihan, Priya, Rushi, Ani, Seema, Jia, Rahul and Lalita Jitan Parivar. Lavon Che Jitan Parivar hai yahan par. Saath nibhane ke liye shukriya da. Abhi ke liye let's take a chota sa break, then we'll be back with this of course. Choli ke piche kya hai, jahan par aap saath nibha sakte hain, bilkul ga bhi sakte hain, hamare saath jhoom sakte hain, naach sakte hain.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: क्या बात है यहाँ पर, चाहे आप चोली साड़ी, इट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो फॉर द फैशन टिप.
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
0: जैसे अभी नाइट ड्यूटी के लिए आप जा रहे हो तो आई कांट जैसे टेल यू कि आप साड़ी पहन लो. नो, नाइट शिफ्ट हो या इवनिंग ड्यूटी, डार्क शेड्स जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे हमेशा एलिगेंट रहता है. तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं जैसे कि जीन्स, सो डार्क ग्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो, जीन्स एंड नेवी ब्लू शर्ट, डिफरेंट ब्लाउज, सिंपल ज्वेलरी और ट्रेंडी हैंड बैग आपके आउटफिट को और भी अट्रैक्टिव बना देता है. याद रखिएगा, स्टाइल कभी टाइम नहीं देखता. Okay, शाम हो या सुबह, बस अपने आप को फील करो. यू विल जस्ट सी योरसेल्फ सो ब्यूटीफुल व्हाटएवर यू आर वेयरिंग.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: आरएम2,
2: रेडियो.

शाम के 6 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण, ये बात कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो ग्यूटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर बात की। नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम भी लगा। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉरिशस पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज लगी एक परामर्श कार्यशाला के दौरान परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इस महीने से देश की पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस समय अनुसार कल रात करीब 11 बजे नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। उनके स्वागत

0: लिए केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन ज्वाले वहां पहुंचे हुए थे। मॉशन डेलीगेशन में प्रधानमंत्री ने के साथ जूनियर मंत्री धनेश दामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदियाल, फ्रांस के लिए मॉरिशस के राजदूत जोएल हॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे पर स्टेट लाउंज में विशिष्ट अतिथि पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच कायम घनिष्ठ संबंधों का खास उल्लेख किया और कहा कि केन्या वो पहला देश था जहां उन्होंने यात्रा की थी जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ निरेबुई में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याता से मुलाकात के लिए गए हुए थे, जिसके बाद केन्या के राष्ट्रपति ने मॉरिशस के संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद देने के लिए प्रतिभाशाली न्यायिक सलाहकार टॉम बोया को मॉरिशस भेजा था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम उन करीब 40 अफ्रीकी राष्ट्र नेताओं में शामिल हैं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में भाग ले रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्घाटन आज केन्या की राजधानी में किया गया। और मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण है। ये बात कर रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर भी बात की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मॉरिशस को दिए जाने वाले निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने आभार प्रकट किया। अब्दुल बुला की रजनी बिकर।
1: कल रात नैरोबी में जम्मू केन्याता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच बहुत अच्छी मुलाकात चली। दोनों ही महानुभाव केन्या एक साथ ही पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में भेंट करने का निर्णय लिया। उनके बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली, जिसके दौरान मॉरिशस और राष्ट्र संघ के बीच बेहतरीन संबंधों की चर्चा की गई। मौके पर मॉरिशस के लिए कई अहम दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय मुद्दों तथा वित्तीय और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की बात शामिल। इस मुलाकात के बाद एंटोनियो गुटेरेस और डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने एमबीसी को एक विशेष भेंटवार्ता दी। राष्ट्रसंघ महासचिव ने उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना छोटे द्वीपीय देशों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करना पड़ रहा है।
2: It was a pleasure for Mauritius to welcome you. Maybe some words after your meeting with the Prime Minister.
3: Well, Mauritius is for us a fundamental partner. Mauritius is.
1: Antonio Guterres ने कहा, Mauritius हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। Mauritius बहुपक्षीय पहलू को लेकर राष्ट्रसंघ के प्रति कटिबद्ध है। मॉरिशस एक छोटा द्वीपीय विकासशील देश है और ये हमारे लिए प्राथमिकता है, चाहे जलवायु को लेकर हो, अडेप्टेशन अनुकूल कदम उठाने के लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधार प्रणाली को लेकर हो। मध्यम आय वाले देशों के लिए समर्थन की जरूरत है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग कायम है इन सुधारों के सिलसिले में। लोकतंत्र एवं सुप्रशासन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है मॉरिशस, अन्यों के लिए एक सीख।
3: I believe is a lesson for so many others.
1: उधर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रति कई सहयोग क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ के निरंतर समर्थन की बात कही, जैसे कि हाल में सड़क सुरक्षा के संबंध में। प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय से उनके साथ मित्रता कायम है। एंटोनियो गुटेरेस जब से इंटरनेशनल सोशलिस्ट में थे, वे हमेशा से अच्छी सलाह देते रहे हैं। निज गए थे तो वे ही पहले व्यक्ति रहे जो मिलने आए, और उनसे मांग की गई तो उन्होंने श्री टॉड का नाम लिया जो सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में सहायता प्रदान कर रहे
3: हैं।
1: इस मुलाकात से एक बार फिर से मॉरिशस और राष्ट्रसंघ के बीच घनिष्ठ संबंधों की झलक मिलती है, मुख्य रूप से एक ऐसी अवधि में जब विश्व की बड़ी बड़ी चुनौतियों के चलते अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम लगाया गया, जिसके तहत जूनियर वित्त मंत्री धनेश दामरी ने एक राउंड टेबल की अध्यक्षता संभाली। इस समय दो

0: 2000 से ज्यादा निवेशकों और व्यापारिक ऑपरेटरों ने भाग लिया। मॉर्शन डेलीगेशन में शामिल मॉर्शन निजी से 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्य सत्र में भाग लिया। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉर्शन पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के समन्वय के वास्ते एक क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया है।
1: हिंद महासागर से जुड़े
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। नई दिल्ली में 7 और 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। क्लोदेट जोफा, यक्षणा मिश्रा।
1: हिंद महासागर से जुड़े देशों के बीच यह संवाद भारत की महासागर विजन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना है। समुद्री सुरक्षा चर्चा के केंद्र में रही, क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये क्षेत्र समुद्री डकैती, अवैध मछली मार और गैरकानूनी तस्करी जैसी लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जिनसे निपटने के लिए समन्वित बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता है।
2: In today's uncertain geopolitical environment,
1: भू राजनीतिक स्थिति के चलते आपूर्ति और वितरण प्रणालियां खतरे में हैं। ऐसे में हिंद महासागर का महत्व बढ़ गया है। यहां के देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सहयोग मजबूत करना चाहिए।
2: Lies the Indian Ocean, whose growing vulnerability only reinforces its strategic importance.
3: Mauritius was again privileged in 2025 when Sri Narendra Modi.
1: 2025 में अपने मॉरिशस दौरे के तहत श्री नरेंद्र मोदी ने सागर विजन को विकसित कर महासागर की शुरुआत की। ये प्रोग्राम हिंद महासागर से परे दक्षिणी हिस्से में भी समुद्री संरक्षण को ठोस करता है। ब्लू इकोनॉमी, व्यापार और निवेश तथा प्रकोपों के संचालन पर भी चर्चा हुई। तटीय देशों ने यह स्वीकार किया कि समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन एक बड़े आर्थिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है।
0: उम्का फाउंडेशन के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने फिलहाल पूर्व मरीजों या उनके परिजनों की तरफ से कम 6 शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। जहां एक तरफ ये जांच चल रही है, वहीं साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी तरफ से जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस मामले में उम्का के प्रमुख का कहना है कि वे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। वर्तमान में तैयार की जा रही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रैटेजी 2026-2030 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के 10 सालों की कार्य योजना के अनुरूप अगले 230 तक सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीरताओं में 50% तक की कमी लाना। आज लगे एक परामर्श कार्यशाला के दौरान परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इस महीने से देश की पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मॉरिशस टेलीकॉम ने आज माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके अंतर्गत युवाओं को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर

0: मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माता पिता की बढ़ती चिंताएं दूर करने का उद्देश्य भी रखती है। और चलिए अब एक नए डिजिटल उपकरण पर बात करते हैं, जिसके माध्यम से एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को बेहतर कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कालीतेनेट नामक इस नई सेवा के जरिए एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकेगी और ऑपरेटरों को नियमबद्ध भी किया जा सकेगा। एबेन में आज इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की गई।
1: अपनी इंटरनेट स्पीड जांचिए ताकि आप अपने कनेक्शन की गुणवत्ता का आकलन कर सके। क्या कुछ वेबसाइट कुछ डाउनलोड करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले रहे हैं? क्या ऑपरेटर अपने वादों पर खरा उतर रहे हैं या नहीं? इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, लेकिन कालीतेनेट प्लेटफॉर्म पर परिणाम सीधे ICTA को भेजे जाते हैं। इससे अधिकारियों को ऑपरेटरों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जनता को खुद इंटरनेट क्षमता जांचने का मौका मिलेगा। एकता स्थिति का जायजा ले पाएगा। सर्वर पर एकता को पता चलेगा कि किस इलाके में कनेक्टिविटी खराब है। हम ऑपरेटरों के साथ इस पर काम कर पाएंगे। तीन लाख 56,000 घरों के इंटरनेट से जुड़े होने और 10 लाख से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ ये टूल डिजिटल परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला रहा है। ये उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार देता है।
2: La vision pour Maurice c'est pour nous faire nous pays vivre un regional leader dans AI.
1: हम मॉरिशस को AI में एक इलाकाई लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। AI के साथ नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। हम ढांचों को ठोस बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम ब्लूप्रिंट और AI स्ट्रेटेजी के अनुकूल हम नेट की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। ICTA ने आश्वासन दिया है कि एकत्र डेटा पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। इस लॉन्च के दौरान ऑपरेटरों को भी इस टूल से परिचित कराया गया। अब उनके नेटवर्क के प्रदर्शन पर नियामक अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी।
0: विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की।
3: गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। संरक्षण के बाद मंदिर को नया स्वरूप दिया गया। इसकी 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेकर वहां अभिषेक पूजा की। इस विशेष कुंभ अभिषेक के लिए भारत के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में धर्मध्वज फहराया गया। इस अमृत महोत्सव के लिए सोमनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश से पुष्प भी बरसाए गए। इस खास मौके के लिए मोदी जी ने इस मंदिर के चित्र का एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। सोमनाथ की समृद्ध विरासत मनाने का ये माध्यम रहा।
4: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
3: मोदी जी ने अपने संदेश में कहा कि सोमनाथ मंदिर का संरक्षण भारतीय इतिहास और धरोहर को सुरक्षित रखने की कोशिश दर्शाता है।
0: और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच हैदराबाद में लगे एकजुटाव के दौरान मोदी जी ने भारतीय जनता से एकजुट होकर प्रयास करने की मांग की। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने का भी आग्रह किया।
3: जहां मध्य पूर्व का संकट दुनिया भर को प्रभावित कर रहा है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने

0: देश की जनता को ऐसे कठिन समय में एकजुटता का सबूत देने की मांग की। उन्होंने समस्त जनता से संयुक्त रूप से विशेष कोशिश करने का आग्रह किया, जिससे भारत वैश्विक अस्थिरता के समय मजबूत खड़ा रह सके और इन्फ्लेशन का सामना कर सके। उन्होंने जनता से ईंधन का इस्तेमाल घटाने की मांग की।
1: हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना।
0: भारतीय प्रधानमंत्री ने साथ ही मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सोने की खरीद से बचने की मांग की, जो सीधे विदेशी पूंजी प्रवाह पर असर करता है।
1: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है।
0: मोदी जी ने कहा कि भारत को मजबूत रखने में जनता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
2: विवरण अदिति अवतार का रहा। एक बार फिर हम लौटते हैं स्थानीय खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे, वर्तमान में तैयार की जा रही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रैटेजी 2026-2030 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के 10 सालों की कार्य योजना के अनुरूप अगले 2030 तक सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीरताओं में 50% तक की कमी लाना। आज एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। चलिए माधवी जागरनाथ की रिपोर्ट पर सुनते हैं याचना मिश्रा को।
3: सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्य रूप से रोज हमारी सड़कों पर 7,40,000 से अधिक वाहनों के चलते। इसके मद्देनजर 2026-2030 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी की तैयारी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में रेजवी में आयोजित एक परामर्श कार्यशाला के दौरान कई पार्टनर जुटे हुए थे। इस दस्तावेज के तहत पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के कम्युनिकेशन ऑफिसर सरीना रामसरन ने कहा, पूर्व प्राथमिक कक्षा से सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाना शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत में ही हम अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व प्राथमिक के करीब 2,500 अध्यापक रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में सिखा पाएंगे। बाद में संबंधित सामान भी विकसित किए जाएंगे। साथ में माध्यमिक स्तर के लिए कार्य कर रहे हैं। डीओ और तैयार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी की मांग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने कहा कि इस नई राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी का मकसद है देश को राष्ट्र संघ के डिकेड ऑफ एक्शन के अनुकूल लाना। इसी उद्देश्य के साथ कि 2030 तक मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या 50% से घटे। उन्होंने कहा, लोगों के सोचने के ढंग की बात कर रही है, संस्कृति बदलने की बात कर रही है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे कितने भी अच्छे कानून लाएं, कानून का पालन न करवाए जाए और लोगों के सोचने के ढंग को न बदलें तो कुछ खास नहीं किया जा सकता है। ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो उसकी सुरक्षा हो और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की भी सुरक्षा हो, खतरा न हो, न उसके लिए और न अन्यों के लिए। मॉरिशस विश्वविद्यालय इस दस्तावेज की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सड़क सुरक्षा के नेशनल ऑब्जर्वेटरी के लिए भी जिम्मेदार है। इसके प्रो वाइस चांसलर अकादेमिया के प्रोफेसर पुनादुरई रामासामी ने कहा, मॉरिशस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपने फाइनल ईयर में अपनी परियोजना पेश करते हैं। PhD के विद्यार्थी भी हैं, साथ ही रिसर्च अफसर भी रोड सेफ्टी से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस नई नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मूल ढांचे में सुधार लाए जाएंगे और फैसला लेते वक्त टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी ध्यान में रखा जाएगा।
2: विवरण रजनी भिकर का रहा। और अब मौसम का हाल।

हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं और अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, सिवाय देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे और हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:30 बजे।

0: 6:24 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजान को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

भुजुलिन पायुत काठोबोन में, भुजुलिन पायुत काठोबोन में 72 साल की 72 years old श्री भानुदत्त भतु, श्री भानुदत्त भतु जिन्हें लोग आनंद भतु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के दो बजे इनके मकान भुजुलिन पायुत काठोबोन से उठाकर थामा मेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रेलवे रोड केवल नगर बैरिव में 84 साल की 84 years old श्रीमती बसंती भागीरथी, श्रीमती बसंती भागीरथी पैदाशी नाम तुकाय और जिन्हें लोग संता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के एक बजे इनके बेटे धीरज भागीरथी के मकान रेलवे रोड केवल नगर बैरिव से उठाकर ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 82 रॉयल रोड पायुत काठोबोन में 93 साल के 93 years old श्री हीरामन अनूप जिन्हें लोग जगदेव नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है कल सुबह 10 बजे इनके मकान नंबर 82 रॉयल रोड पायुत काठोबोन से उठाकर बालों सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सिवनुत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के दो बजे इनके पति धनराज सिवनुत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रामलोल स्ट्रीट कंकारोल रिविया दे क्रेओल में 70 साल की 70 years old श्रीमती सुमित बना पैदाशी नाम लद्रु और जिन्हें लोग सरोज नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के डेढ़ बजे इनके पति किसुन बना के मकान रामलोल स्ट्रीट कंकारोल रिविया दे क्रेओल से उठाकर तोबोलेन में बग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1:30 PM। नंबर 4 जॉर्ज विक्टो केवेन पोर्टली समय 69 साल के 69 years old श्री जयन कुमार फूलबोसिया जिन्हें लोग जयन नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कालीमाइकासी के अध्यक्ष थे। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 4 रोज विक्टो कावेन पोर्टलिस से उठा

0: कर ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। और रॉयल रोड लाल माटी में, रॉयल रोड लाल माटी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड है श्री सच्चिदानंद रामास्वामी, श्री सच्चिदानंद रामास्वामी जिन्हें लोग सत्यानंद कोठाकतिया नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के मकान रॉयल रोड लाल माटी से उठाकर मेजिन कौदिमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: One of my favorites, taken from the movie Bhoot Bangla. 6:30 मिनट हुए आप जुड़े आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ निभा रही आपका साथ मनीष माटल 7 वैसे यहाँ पर आपके मैसेजेस डेडिकेशन स्वागत हैं यहाँ पर जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं ऑन दिस नंबर 5499124 डोंट यू फॉरगेट
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती
0: वैसे कुछ खास गाने आपके लिए आपके खत पर चुन कर लाए हैं
3: जिंदगी को कोई
0: हैव अ वंडरफुल इवनिंग स्टार्ट ऑफ द इवनिंग विद अस ऑन आरएम2 रेडियो

ऐसे ऐसे समय में बस गाने का मन करता है, वैसे ये सिलेक्शन ये शाम मस्तानी फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी के लिए शाम में थोड़ा सा रंग डाल देते हैं, बेशरम वाली रंग। आई गेट हियर द नेक्स्ट सॉन्ग, पठान मूवी से लिया गया बेशरम रंग फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे आप जानते हो कि यहाँ पर जो सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके मूड को और भी रंगीन बनाने के लिए। चलिए थोड़ा सा रंग डाल देते हैं।

This one goes out to all those जो कि स्टाफ में एक्चुअली मेडिक क्लिनिक स्टाफ लोगों के लिए उनको डेडिकेट करना चाहते हैं बिदले की मेडिक क्लिनिक को. थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस लेडीज एंड जेंटलमैन. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम आउट देयर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस हियर आल्सो ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: सॉन्ग्स वी शी डेडिकेटिंग इट टू यलेशम ऑफ सूरीनाम जो कि हमारे साथ निभारे हैं यहाँ पर. हाई रिक्वेस्टिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माई डॉटर्स गर्वी एंड तेशनी फ्रॉम ममारीना एंड ऑल्सो अर्बन फैमिली ऑफ लव ऑन टू ऑल्सो हेलो जी ए वन सिलेक्शन दरिंशिता रविश विशाल अविशा एंड आप द फैमिलीज ऑफ वैष्णव भी साथ निभा रहे हैं. क्या बात है.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
1: रेडियो

0: वो चली देखो प्यार की गली, लेकिन हम तो चले बस आप लोगों के दिल की गली एंड आपके दिल में बस पनाह देने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे प्यार में सब लोग पनाह ही ढूंढते हैं और सोचने वाली बात ये है कि जब प्यार होता है तो आप के मन में बस यही ख्याल आता है कि आई जस्ट होप कि वो प्यार उतना ही ताज़ा रहे टिल द एंड ऑफ टाइम, वो प्यार उतना ही सच्चा रहे, वो प्यार में और भी प्यार का एहसास हो और सब लोग इसके पीछे भागते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वी आर चेजिंग अ पर्सन बट वी आर नॉट चेजिंग समवन, वी आर चेजिंग द इमोशन, वी आर चेजिंग द फीलिंग। जिस तरीके से जब आपको प्यार होता है ना, जब आप किसी के साथ रहते हैं, जिस तरीके से वो आपको एहसास कराते हैं, महसूस कराते हैं, उसी एहसास के पीछे आप भागते रहते हैं और क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ बदल जाता है और आप उसी फीलिंग के पीछे भागते रहते हैं टू मेक थिंग्स बेटर और दिन ब दिन ये प्यार कम होता जाता है। चलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं सो जस्ट लेट मी टेल यू दैट शायद कहीं से आप हमें सुन रहे होंगे, सो यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ लव, क्योंकि सच्चे प्यार में यू डोंट नीड टू चेज द पर्सन, यू डोंट नीड टू चेज द फीलिंग। और प्यार में क्या होता है, वो फीलिंग अपने आप हमारे पास आता है। और प्यार में यू नीड द सिक्योरिटी, द इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी प्यार में आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो शायद ये प्यार नहीं है। चलिए 7:06 हो चुके हैं, दिव्या का साथ अभी से लेकर रात के 9 बजे तक। इन योर इवनिंग लाउंज सिट बैक रिलैक्स एंड कीप एंजॉयिंग द कूल रोमांटिक म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। हम बहुत ही प्यार से चूज करके लेकर आए हैं ये खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए। तो चलिए आपके मैसेजेस का भी वेलकम करेंगे ऑन 5499124। साथ में लाइन भी खुली है, अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए आप दिल के जज्बात को शेयर करना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 4280354 पर आपका इंतज़ार रहेगा। डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: Well, we have this beautiful गाना taken up from the movie तेजाब सो गया ये जहां एंड इस गाने की फरमाइश की है आशा जी ऑफ मिडलैंड्स ने. अब वैसे उनका फ़ोन आया और कहती हैं कि इस बार ऑन एयर यानी कि बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यार से रेडियो मस्ती टीम को उन्होंने बहुत ही प्यार से याद किया है. और यही गाना जाएगा फॉर बहन निशा, भाई विशाल, आपके मॉम डैड के लिए. आपकी फ्यूचर सुन लो है माचियास, आपकी बेटी दिशा मॉरिशस में नहीं है बट उनको बहुत ही प्यार से याद किया जा रहा है. सभी फैमिली के लिए एंड सभी ENT स्टाफ के लिए आशा जी आप मिडलैंड से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. दिस गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम. डोंट फॉरगेट, अगर आप भी हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो वेटिंग फॉर योर फोन कॉल्स ऑन 4282 35 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8 2 3 5 4 2 8

0: हमारा और आपका रिश्ता भी काफ़ी पुराना है और इस पुराने रिश्ते को ऐसे ही बरकरार रखना है। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। नमस्ते दिव्या जी, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर मेधा, मनीष, श्रेया, अरियान, नील, शीतल, विकी, रितीना, नितिन, संगीता, मोताई, ब्लॉन्श, आपको भी धन्यवाद। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे दुगेश के लिए जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और अनला के लिए मैसेज इतना ही आया है। बस अगर आप एक बार फिर से अपने अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें याद कीजिएगा 1549912294 व्हाट्सएप के ज़रिए, क्योंकि नॉर्मल मैसेजेस में कभी कभी बस हमारे मैसेजेस इनकम्प्लीट आ जाते हैं। एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे ख़ास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शायद यू माइट बी हैविंग योर डिनर राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बना पीछे शुभाहार। बस खूबसूरत गीतों का पूरा पूरा लुत्फ उठाते जाइए डिनर ले लेने के बाद। जैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि कुछ लोग टहलने निकल जाते हैं, वॉक के बहाने आपको थोड़ा सा अपने खाने को डाइजेस्ट करना मिल जाता है और साथ में थोड़ा बहुत और गुड मोमेंट्स आपको स्पेंड करने के लिए मिल जाता है अपनों के साथ। तो चलिए इस पल को हमेशा आप याद रखेंगे। कभी क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे पल ही ज़िंदगी के सबसे ग्रेट मेमोरीज बन जाते हैं, इसलिए जितना हो सके ना आपका दिन चाहे कितना भी नॉर्मल हो, आप अपनों के साथ जब वक्त बिताएंगे तो खुद ब खुद उसमें ब्यूटीफुल मेमोरीज पनप कर आ ही जाएंगे जो आप अपने यादों के पिटारे में संभल कर रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इतनी गारंटी तो हम ज़रूर देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और गीतों के साथ हम बढ़ेंगे एंड साथ में आपके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा 2835-402-85.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

वेल 7:35 होने को है और चलिए दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत तरानों का कारवां टिल 9 PM कुछ खूबसूरत मैसेजेस के साथ. ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे एंड चलिए यहां पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे ऋषि विदेशी ऑफ बॉम्बू के लिए. विशिंग ऑल द बेस्ट एंड आप लविंग मोमेंट्स विश कर रहे हैं फॉर ऑल मदर्स एंड मोम्स इन लॉ एंड आप कहते हैं हु आर एंड हु आर गोइंग टू बी ऑल टाइम रिलेटिव्स फ्रॉम ऑल फ्रेंड टू आर एम टू लिसनर्स एंड आप हैं केविन बालिया एज वेल. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम ज़रूर उन तमाम लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे जो शायद इस वक्त काम पर होंगे. चलिए लगे हाथ ये अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे नेहा के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम पुएर्टो पिमा एंड ये अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर योर नेफ्यू श्रेयान जिनका बर्थडे है आज. सो हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रेयान को भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आप बस जियो हजारों साल मम्मी पापा का नाम ज़रूर रोशन करना एंड श्रेयान वी जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ एंड वी जस्ट विश कि ये जो आपका बर्थडे है ना आपकी तरह ही स्पेशल हो एंड आई जस्ट होप दैट यू हैड अ ग्रेट टाइम सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एंड पूरा महीना आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें एंड मेक इट मोर स्पेशल. सो श्रेयान वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मासी नेहा. वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम एंड ऑल्सो विशेज कमिंग फ्रॉम योर मॉम योर डैड आपकी प्यारी सी नानी की तरफ से भी और पूरे आपके परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार बहुत सारी शुभकामनाएं.

बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी में अगर आप अधूरे से महसूस करते हैं ना, तो प्यार जब आपकी ज़िंदगी में आता है तभी आप पूरी तरीके से कंप्लीट फील कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है तो प्यार से भी दुनिया कायम है। एंड चलिए अभी के लिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर मॉम सुरेखा ऑफ मौला शो फ्रॉम लवली डॉटर वर्षा। यहाँ पर आप कहते हैं प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर धनुधारी फैमिली और प्लेंदी पपाई मिस नेमोल प्रिया। आप हैं कनाडा से, आंखों से काफ़ी दूर और दिल के बहुत ही करीब। चलिए प्रिया जी, उम्मीद करते हैं कि यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स थ्रू रेडियो मस्ती। एंड ऑफ कोर्स ये गाने आपको आपकी फैमिली के साथ ज़रूर कनेक्ट कर रहा है। चलिए प्रिया, ये गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर यू एंड साथ में वी विल डेफिनेटली विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ग्रिष्टि। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ग्रिष्टि, बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम पापा हंस, मामा पूनम, दादी दादा, भाई हैं रिहान एंड आर्यन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। ऑल्सो बेस्ट विशेज फ्रॉम मामू विकास रामधुनी एंड सभी रामधुनी सिगोबिन एंड ओकलू फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार का जो सुगंध है आप तक जरूर पहुंचता रहे। एंड ग्रिष्टि, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर होल रेडियो मस्ती टीम। और ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से आपके लिए।

0: दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके चुपके चुपके क्यों भाई। अगर आप लोगों को प्यार करना है तो खुलेआम आपको प्यार करना है, इसका इजहार इकरार भी आपको हमेशा करते ही रहना है। प्यार के इस एहसास को कभी मरने नहीं देना है और इसको ज़िंदा रखने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप हमारे गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा और प्यार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर। एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे, द नेक्स्ट सॉन्ग टू वन इन अ मिलियन डॉलर हस्बैंड कोविलेन फ्रॉम वाइफी नीनी। दैट्स रियली क्यूट नेम नीनी। उम्मीद करते हैं कि यू आर कनेक्टेड राइट नाउ एंड यू आर लिसनिंग योर नेम एंड स्माइलिंग एट द सेम टाइम। सो द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड योर हस्बैंड कोविलेन। एंड आप कहते हैं नमस्ते दिव्या जी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। लवली गाने, मे आई रिक्वेस्ट द सॉन्ग पहली पहली बार है फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है, इफ पॉसिबल। थैंक यू शुभरात्रि आपको भी। वैसे अगर आप फ़ोन करते तो शायद आपके इस गाने को कंसिडर कर पाते, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो ज़रूर आपके लिए ये अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे। साथ में अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मे बी योर वर्किंग नाइट शिफ्ट। ऑल्सो द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर मनीष अमर राजा बानी जिसिक फैमिली कुबलाल जो इस वक्त रिव्या जो से हमारा साथ रहे हैं। एंड चलिए अभी के लिए ये अगला गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त हमें बहुत ही प्यार से सुन रही है।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.
4: Preet ki lat mohe aisi lagi.

0: That was such a soulful and a beautiful gana taken up from the movie जानम समझा करो. कुछ समझने और समझाने का कभी कभी वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे बिना कुछ समझाए हम बहुत कुछ सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं. शायद इसको प्यार कहते हैं, और प्यार में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है. एंड कहते हैं ना कि प्यार की बुनियाद दोस्ती है और दोस्ती की बुनियाद रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होता है. अगर ये दो कीवर्ड्स दोस्ती में और प्यार में ना होना तो बस ये बहुत ही फीका रिश्ता हो जाता है. इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बुनियाद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि बाद में आप इस रिश्ते को और भी मजबूत बना पाएं. चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे टू यू. वैसे आपने नाम नहीं लिखा है, बस एक प्यारा सा मैसेज आया है. अपने पेरेंट्स के नाम आपने डेडिकेट किया है. द नेक्स्ट गाना, हेलो, वी वुड लाइक टू मेक अ लिटिल डेडिकेशन टू द बेस्ट कपल, पेरेंट्स एंड गार्डियन ऑफ आवर लाइव्स, हुज 30th वेडिंग एनिवर्सरी इज टुडे. वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैव देम इन आवर लाइफ ऑलवेज डे और नाइट. बिग लव फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच RM2. थैंक यू कि आपने इतना सा प्यारा मैसेज भेजा है, और इस प्यारे से मैसेज में आपने हमें भागीदार बनाया है. एंड इट्स रियली लवली टू सी किड्स लविंग द पेरेंट्स लाइक दिस. एंड चलिए आप लोग हमेशा इसी तरीके से आपस में प्यार बांटते रहें, एंड आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहे, वो जिए हज़ारों साल, बस प्यार के साए में आप पलते रहे एंड उनका प्यार आप हासिल करते रहे. चलिए यहाँ पर आप कहते हैं नमस्कार, आदाब एंड जय श्री कृष्णा. एंड आपको भी जय श्री कृष्णा. किशन जी, आप हैं वालिद फ़त से. नेक्स्ट गाना, कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज़ में एक बहुत ही कूल म्यूज़िक, ज़रूर हम कोशिश करेंगे. टू ऑल रेडियो मस्ती टीम एंड संगीत प्रेमी, थैंक यू किशन जी साथ देने के लिए. एंड बदवक विदेशी जी, एनी सॉन्ग फॉर अनुषा ज़रूर हम डेडिकेट करेंगे. एंड साथ में यहाँ पर ख़ास तौर से अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे पठान जी के लिए, जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ. आपका मैसेज तो बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं. कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपके मैसेजेस हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. कभी कभी वक्त के चलते हमें टाइम नहीं मिलता है, या फिर कुछ और भी मैसेजेस आ जाते हैं, इसकी वजह से आपके मैसेज और थोड़ा नीचे चला जाता है. लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सके हम कोशिश करते हैं आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए. आप कहते हैं दिव्या जी, गुड इवनिंग रेडियो मस्ती, आपका शो दिल को बहुत सुकून दे रहा है. स्पेशल डेडिकेशन फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ, उसका चेहरा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ है. वाह क्या बात है, ये पढ़ के दिल खुश हो गया है. बस अगर किसी को प्यार हासिल करना है, तो प्यार का अगर कोई चेहरा होता तो वो आपकी तरह होता, और ये एहसास शायद आपकी तरह ही होता. इट्स रियली नाइस नोइंग दिस. चलिए ये अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ, गुज आउट फ्रॉम हस्बैंड पठान फैजन खान इन मॉरिशस. एंड आप ने काफ़ी लंबा मैसेज भेजा है, और उनके लिए बस आप इस बस इतना कहना चाहते हैं कि हर रोज़ दुनिया से लड़ लेता हूँ, हर रोज़ दुनिया से लड़ लेता हूँ, पर घर आकर उसका चेहरा देखते ही सारी थकान ख़त्म हो जाती है. स्पेशल डेडिकेशन फ्रॉम फैजान टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ. और साथ में आपने ऐड किया है दैट शी इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेसिंग एंड बीएस पीस. और चलिए अगर हो सके तो आपका ये गाना हम चलाएंगे, बट वी डोंट प्रॉमिस, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये गीत ऑलरेडी उन लोगों ने मांग लिया है. बट वी हैव सम ब्यूटीफुल गाने, जो हर एक गाना हम चलाएंगे वो आपके लिए और आपकी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. We have this beautiful gana Anuradha Porwal and Harin Hariharan ki awazon mein le chalo tum jahan pyar hi pyar ho bilkul pyar ki duniya mein to aap tak ज़रूर ये प्यार पहुंचा रही है. एंड किसी ने हमें मैसेज किया है, ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट ही, थैंक यू सो मच. नाम क्या है आपका? ओके, ऊपर मैसेज स्क्रॉल कर रही हूं तो आपके बाकी प्रीवियस मैसेजेस को देखने के बाद ये पता चला है कि आपका नाम टोनी जी हैं. आप हैं खुशबुआ से साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच. और बस ये गानों को पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच. एंड आप कहते हैं कि टू द गर्ल लिसनिंग टू रेडियो मस्ती राइट नाउ, इफ दिस सॉन्ग रीचेज यू देयर इन स्विट्जरलैंड, जस्ट नो समवन आउट देयर थॉट ऑफ यू द मोमेंट इट स्टार्टेड प्लेइंग, प्लीज डेडिकेट केसरिया. आपने अपना नाम नहीं लिखा है बट बिल्कुल आप किसी को याद कर रही हैं जो सात समंदर पार हैं.

ये भी एक तरीके का स्पेशल लव ही होता है. एंड चलिए, आप अपना नाम बस गुमनाम रखना चाहते हैं. एंड आई जस्ट होप कि वो लड़की इस वक्त शायद हमें सुन रही होगी, तो उनको पता चल गया होगा. जब प्यार सच्चा होता है ना, तो मैसेज भेजने का तरीका भी लोगों को पता चल जाता है. सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस. मे बी यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, सो प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड केयरफुली. और अगर आप लोग इस वक्त घर पर हैं, आराम फरमा रही हैं, तो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musty.
4: चांद छुपा। वेल फ्रेंड्स, 8:55 हो चुकी हैं और चलिए यही गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर लवली वाइफ अंजलि फ्रॉम हस्बैंड मेविन। अनला के लिए आपका ये गाना हम नहीं चला पाए, लेकिन कोई बात नहीं, चंदारे गाना आपको सुनना था और यहाँ पर चांद वाला गाना आ गया। सो दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एज वेल। एशले ड्राइविंग राइट नाउ, आपका मैसेज यहाँ पर अधूरा आया है एशले के लिए खास तौर से ये पैगाम, इतना गुस्सा ठीक नहीं, क्या करोगी इस गुस्से का जब मैं ही नहीं रहूंगी। ऐसी बातें नहीं करते हैं, बस प्यार में थोड़ा बहुत गुस्सा तो चलता ही चलता है, लेकिन हर वक्त गुस्सा नाक पर चढ़े रहना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो एशले, आई जस्ट होप यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, बस गुस्सा कम करिएगा। एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्यार से साथ दिया। इसी के साथ दिव्या के जाने का टाइम आ गया है, हम कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम 7 से लेकर रात के 9 बजे के बीच इन योर इवनिंग लाउंज। तब तक के लिए Take care, keep smiling, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: मई का महीना है और इस सर्दीली रात में मैं नितुषा आपका स्वागत करती हूँ। Wishing you all a very good evening, my dear listeners. Really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। So are you ready to get on this musical train? वो भी रात्रि के 12 बजे तक। It's your late night grooves. आपका स्वागत है।
1: Late night grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

जिंदगी की असली खूबसूरती बड़े सपनों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों में छुपी होती है जो हर रोज हमारे आसपास बिखर जाती हैं। कभी किसी अपने की मुस्कान, कभी एक प्यारी सी बात, तो कभी मौसम की हल्की सी ठंडक दिल को सुकून दे जाती है। That's why, खुश रहना सीखिए और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ भी बांटिए, क्योंकि बांटी हुई खुशी हमेशा दुगनी हो जाती है।

0: इजाजत है।
1: दुनिया में वैसे हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, और ऐसे में अगर आप किसी के चेहरे पर एक मुस्कान ला सके तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा काम कर दिया। एक प्यारा सा लफ्ज, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची दुआ भी किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकती है। इसलिए आज से एक आदत बना लीजिए खुश रहने की और खुशियां बांटने की।
2: लेट नाइट ग्रूव्स,
3: RM2, रेडियो मस्ती।

मैन ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती नीतू के साथ और खुशियां बांट रहे हैं गानों के जरिए। तो ये भी सुनते चले कि कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में ना हम इतने उलझ जाते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। होता है आपके साथ? लेकिन दोस्तों, जिंदगी का असली मजा तो इसी में है कि हर पल को महसूस किया जाए, हर लम्हे को दिल से जिया जाए। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बल्कि एक एहसास जो दिल से निकलकर दूसरों तक पहुंचता है।

गाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ सबसे खूबसूरत है तो वो है आपकी मुस्कान और आपका प्यार। पैसे और दौलत तो एक दिन खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन किसी को दी हुई खुशी और इज्जत हमेशा याद रहती है। तो चलिए आज हर गिले शिकवे भूलकर सिर्फ प्यार और खुशियाँ बांटते हैं।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

जिंदगी जितनी खूबसूरत है इतनी ही छोटी है, इसलिए इसे टेंशन और नफरत में बर्बाद ना कीजिए। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम एक नया तजुर्बा देकर जाती है। बस जरूरत है तो हर पल में खुशी ढूंढने की और अपनी पॉजिटिविटी से दूसरों की दुनिया रोशन करने की।

किसी उदास चेहरे को गौर से देखेगा, शायद वो सिर्फ एक प्यारी सी बात सुनना चाहता हो। किसी को वक्त देना, उसकी बात सुनना और उसे एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास खुशियों का माहौल बनाइए।

Already in the second hour of late night grooves, नीतू के साथ. Wherever you might be, काम पर होंगे, घर पर होंगे, ऑफिस में होंगे, लेट नाइट ड्राइव पर निकले होंगे, या फिर ड्राइव करते करते किसी और मंजिल तक पहुंच गए हैं. याद रखिएगा, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ. हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी की तलाश में रहता है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब दूसरों की खुशी का सबब हम बनते हैं. किसी की मदद करना, किसी को हंसाना, किसी की उम्मीद बन जाना, नॉट ईजी, बट ये सब जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास.

खुशी की बात चल पड़ी है तो वो कोई महंगी चीज नहीं है जो सिर्फ अमीर लोगों के पास हो। खुशी तो एक कप चाय की प्याली में भी मिल सकती है, पुराने गानों में भी और अपनों के साथ बिताए हुए वक्त में भी। बस दिल में शुक्र और प्यार होना चाहिए, फिर हर लम्हा खूबसूरत लगने लगता है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: अभी खुद के लिए भी वक्त निकालिए दोस्तों, अपनी पसंद के गाने सुनिए, अपनी यादों को महसूस कीजिए और लोगों को याद कीजिए जो आपकी मुस्कान की वजह बनते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद खुश रहता है वही दूसरों को भी खुशियां बांट सकता है।
1: Late Night Grooves,
2: RM2, Radio Musti.

शेयरिंग लव एंड हैप्पीनेस आपके साथ इन गानों के जरिए, थैंक यू सो मच। वैसे दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज किसी की हंसी होती है, और अगर आप किसी की हंसी की वजह बन जाएं, तो समझिए आपने जिंदगी का सबसे प्यारा काम किया। इसीलिए हर रोज किसी एक इंसान को खुश करने की कोशिश अवश्य करें।

0: saw you. I love you.
1: देखिए, खुशियां तो हम सब चाहते हैं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म भी नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्कुराना ही छोड़ दें। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना और अपनी मुस्कान से अंधेरों को भी रोशन करते रहना।

को कितनी प्रेरणा मिलती है ना, जब आप दिल से किसी को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उस दुआ, उस आशीर्वाद की रोशनी सबसे पहले आपके दिल को सुकून देती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अपनी पॉजिटिविटी को हर तरफ फैलाते रहें। देखना, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी।

जैसे हम भी कोशिश करते हैं गानों के जरिए खुशियां बांटने की, और खुशियां बांटने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत करें। हर दिन एक त्योहार बन सकता है अगर दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हो। किसी अपने को फोन कर दीजिए, किसी दोस्त का हाल पूछ लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को खूबसूरत बनाती है।

0: असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसकी मुस्कान से होती है। जो लोग मुश्किलों में भी दूसरों को हिम्मत और खुशी देते हैं वो असली हीरो होते हैं। तो चलिए आज से हम भी किसी की जिंदगी में एक प्यारी सी रोशनी बनने की कोशिश करते हैं। आखिर में बस इतना ही याद रखें कि जिंदगी तब सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है जब दिल हल्का हो, मन शांत हो और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान हो। नफरत और गुस्से को छोड़े प्यार और खुशी को अपनाइए, क्योंकि खुश रहना भी एक इबादत है और खुशियाँ बांटना सबसे बड़ा पुण्य। प्रणाम, शुभ रात्रि।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा। ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2 Radio Masti Feel the Masti
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है